सुपर बात। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैसाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार आज 16 मई 2026 ईस्वी है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:54 होने को है। लीजिए अब सुने हमारी आज की सभा इस मंगल ध्वनि के साथ।

0: प्रातःकालीन सभा में कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं समाचारों के साथ। समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचार होंगे हिंदी और अंग्रेजी में। कृपया इन समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, LPG आपूर्ति, AI सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का

0: विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi arrived in the Netherlands late last night on the second leg of his five-nation tour aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Toon Berendsen upon his arrival at Amsterdam Airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Our correspondent covering the Prime Minister's Netherlands visit has filed this report. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on their Majesties, the King and the Queen. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. On Saturday, PM Modi will address the Indian community and meet CEOs of leading Dutch companies. Several important agreements are expected to be signed, particularly in the fields of semiconductor chips and AI, where the Netherlands stands as a global leader. After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Gothenburg in Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson. The government has imposed a special additional excise duty of 3 rupees per litre on export of petrol. According to official Gazette notifications issued by Ministry of Finance yesterday, the special additional excise duty on diesel exports has been brought down to 16 rupees 50 paise per litre from 23 rupees. The special additional excise duty on aviation turbine fuel has also been reduced to 16 rupees from 33 rupees a litre. The revised rates will remain in force for the next fortnight beginning today. There has been no change in the existing excise duty rates for petrol and diesel for domestic consumption. Prime Minister Narendra Modi has reiterated government's commitment to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a media report on imposing cess, tax or surcharge on foreign travel. He said the report is completely false and there is not an iota of truth in it. The Prime Minister said there is no question of imposing any such restrictions on foreign travel. Central Board of Secondary Education has issued a notice outlining post-result declaration facilities for Class 12 students, reaffirming its commitment

शुतो, अभी आप सुन रहे थे शिव तांडव स्तोत्र भक्ति रचनाओं का एक कार्यक्रम। इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से बोल रहे हैं। श्रोताओ, लीजिए अब सुने कार्यक्रम चिंतन।
1: योग निद्रा, ये योग निद्रा, इसका शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ जानना बहुत

0: आवश्यक है। इसको जानने से पहले हम निद्रा क्या होती है, यानी रात को हम सो जाते हैं तो होता क्या है। सो जाने का मतलब जाते कहाँ, हमारा जो कॉन्शस माइंड है और वो हमारा कंठ के पास में हिता नाम का एक नाड़ी होता है जो हमारा सब कॉन्शस माइंड से जुड़ा हुआ रहता है। तो दिन भर हम काम करते हैं, थक जाते हैं, हमारा बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है, तब हम सो जाते हैं रात को। लगभग आम व्यक्ति के लिए 6 से लेकर 8 घंटे का नींद जरूरत पड़ता है। इन 6 से 8 घंटे में होता क्या है, हमारा कॉन्शस माइंड सबकॉन्शस माइंड और अनकॉन्शस माइंड में मिल जाता है, तब वो जो सबकॉन्शस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। जब वो सबकॉन्शस माइंड एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति अपना जीवन में जो कुछ भी उन्होंने देखा, सोचा और वो सभी बातें वो किया नहीं है, कर्म में नहीं लाया, और वो नींद में ड्रीम्स जो हमारे ख्वाबों के माध्यम से बाहर निकलता है, और उस स्थिति के बाद में जब वो अनकॉन्शियस माइंड पे लेवल जाते हैं तो गहरा नींद में चले जाते हैं। अब योग निद्रा का मतलब है इस कॉन्शियस माइंड को जागते हुए कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड में मिल जाना, मतलब हमारा सोच के अंदर में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में दीवार होता है, उस दीवार को तोड़ देने का नाम योग निद्रा है। मतलब हमारा कान सुनते रहेंगे और शरीर स्पर्श होते रहेगा लेकिन हम रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट करते किससे, जब हम कॉन्शसनेस से पहचानते हैं तो। अब कॉन्शसनेस को हम काम देते हैं तो इसमें 3 प्रक्रिया होता है। नंबर 1, हमारा कॉन्शस माइंड को हम अपना अंगों में ले जाते हैं, लेट करके आंख बंद करके अपना पूरा मन को, चित्त को, जो सिर के सिरे पर जहाँ ब्रह्मरंध्र कहलाता है वहाँ पर केंद्रित करते हैं। वहाँ से केंद्रित करता हुआ उसको हम मेरुदंड के ऊपर जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर रिंग के नीचे, रिंग बीच में के जगह पर इस तरह हमारा कॉन्शस माइंड को चलाते रहते हैं। ऐसा पूरा मेरुदंड के ऊपर, रिंग के नीचे, रिंग बीच में के जगह जहाँ पर मज्जा, बोन मैरो कहते हैं, तो उसको देखता हुआ नीचे तक आते हैं। अब ऊपर से जो रंध्र निकला हुआ है वो मेरुदंड के आखिरी कोना पर वो जो रंध्र निकलता है, अब उसके अंदर में से हम छीनता हुआ, उसके अंदर में रोशनी देखता हुआ ऊपर को पहुंचेंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, पूरा सीधा हाथ सीधे तरफ, इसमें पूरा शरीर के अंदर में हर अंग प्रत्यंग में से पूरा हम अपना मन को गुजारेंगे। इससे क्या होगा, आज तक हम मन का बात सुनते आए हैं, अब हम क्या करेंगे, मन को काम दे रहे हैं, मतलब हम धीरे धीरे मन का काबू में से बाहर आ रहे हैं। इस तरह हम पूरा शरीर को करने के बाद दूसरा एक स्टेप होता है जिसमें हम मन को बिल्कुल काम नहीं देते हुए लेटे रहेंगे, जिसको असली योग निद्रा बोलते हैं। इस तरह हम 15-20 मिनट बिना किसी संपर्क का ऐसा लेटे रहेंगे। इस तरह 5 मिनट हड्डियों में और शरीर में देखना और 15-20 मिनट बिना संकल्प का रहना, लगभग 35 मिनट का विधि है, जिससे हम 6-7 घंटा सोने से जो आराम मिलता है वो आराम 35 मिनट में मिल सकता है।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओ, लीजिए अब सुने कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आप सुनेंगे हमारी आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम व उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतिहारा वास्ते। 7:15 पर कार्यक्रम होगा लोक भजन। मानस गाना आप सुनेंगे 7:20 पर। 7:30 पर कार्यक्रम होगा सुप्रभात। सुगम संगीत आप सुनेंगे 8:45 पर, जिसमें आपको सुनवाएंगे

ये कुछ भजन। 9:10 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम मरुमंगल। 9:30 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत, जो कि आप सुन पाएंगे लगातार 12 बजे तक। बारह बजकर 5 मिनट पर फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे। सुगम संगीत होगा 12:30 पर। खेत खलिहान आप सुन पाएंगे 12:50 पर। दोपहर 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हमारी संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। सराइकी का वक्त रहेगा शाम 6 बजकर 5 मिनट। चौपाल आप सुनेंगे शाम 7 बजे। 7 बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। 8 बजे कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से।

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे कुछ गजल। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: श्रोताओ, ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए अब सुने समाचार। समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचार होंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी संयुक्त अरब अमीरात देशस्य अल्पकालावधिकां यात्रां सम्पूर्य यूरोपदेशैः सह भारतस्य सामरिक आर्थिक सम्बन्धान् प्रगाढतरं कर्तुं पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य द्वितीये चरणे गतरात्रौ नीदरलैण्डदेशं प्राप्तवान्। एम्स्टर्डम इति विमानस्थानके डच देशस्य विदेशमन्त्रिणा टॉम बेरेन्सन इत्यनेन श्रीमोदिनः स्वागतं कृतम्। इतः पूर्वं सः आबुधाबीनगरे यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह

0: चर्चां कृतवान् आसीत्। डच देशस्य हेग नगरे भारतीय प्रवासिनः सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शनैः प्रधानमन्त्रिणः भव्यतया स्वागतं कृतवन्तः। डच सैनिकाः अपि तम् औपचारिक रूपेण अभिनन्दितवन्तः। भ्रमणावधौ प्रधानमन्त्री मोदी डच देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति, राष्ट्रप्रमुखाञ्च मिलिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसारमाध्यमे श्रीमोदी प्रसारसंस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानामुपरि कथमपि अधिभारम् आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते 3 रूप्यकाणां प्रति लीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रति लीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कं 23 रूप्यकाणाम् अपेक्षया 16.5 रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किमराज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गैंगटोक नगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यत्वदिवससमारोहे भागं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओमप्रकाशमाथुरः, सिक्किमराज्यस्य मुख्यमन्त्री प्रेंग सिम तवांगः, केन्द्रीय पूर्वोत्तरक्षेत्रविकासमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया इत्यादयोऽपि उत्सवेऽस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति, या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बितप्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति, एताः अन्तर्जालीयमाध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीयचरणे छात्राः विसङ्गतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, उतो वा अङ्कनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानाम् उत्तराणां पुनर्मूल्याङ्कनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इज़राइल लेबनानदेशौ वाशिंगटन नगरे सञ्जातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः 45 दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिकादेशस्य विदेशविभागः अवदत्। विदेशविभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृतवार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जूनमासस्य 2-3 दिनांकयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। सीएसके इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1% धावनांकस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन एलएसजी इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलम् 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तमक्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय

0: आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ने किटा रिव्याजे शुं दूर राखनो बहुत जरूरी है। जेके शुं के बीज बीजने शुं पहला पाने उपचारित करनो चाहिए। भी जितना भी आपने किसान भाई जका बिजाई करे सावणी में हाड़ी में और इंगे सागे सागे जायद में, तो जब तक अनुमान वही है अपने के भी 70% ताई किसान है जका बीजो उपचार या कैस का भी करे भी कोनी आप, और 20-30% ताई जकी निजी संस्था है बांशू या सार्वजनिक संस्था शू ज्यादातर भाई जो को बीज खरीदे और वो बिना उपचारित करोड़ो बीज हो, तो अपने देश में यह कैसे भी अनुमान वही है कि लगभग 80% बीज है जो बिना उपचारित करे ही किसान भाई लोग जका बिजाई करे। जका विकसित देशों की तुलना करा तो भी मैं 100% ताई किसान है जेका मांगा उपचारित करेड़ा बीज है जेको बीजे, तो बीज उपचार करने शू बीज की मृदा एर बीज जनित व्याधियां शू रक्षा तो करे ही करे। इंगे अलावा अंकुरित पौधे की शुरुआत की बढ़वार में रस चूसने वाले कीड़ा शू भी रक्षा करे, फिर भी किसान है जेका अपने बीज उपचारित करे कोनी, तो माने बीज उपचार से जेको करना। किसान भाई बात अबावे बीज उपचार करने को के उद्देश्य है, बीज उपचार को उद्देश्य न केवल बीज और मृदा जनित कीटाशु या व्याधियाशु बांगी रोकथाम करना है, बल्कि जीवित परंतु सुप्त जीवाणुओं के लेप करण खातर वो अपने प्रयोग जको करना पड़े। जको बीज अंकुरण के बाद अंकुरित बीज ने एक स्वस्थ और ओज पूर्ण विकसित पौधे के खातर नाइट्रोजन का भी ने भरपूर मात्रा में मिले, जैके शू कह के बूंटो अच्छो स्वस्थ हो सी और भी पर फूल है फल है जका चोखा लगेगा और अपनी फसल को उत्पादन जके में बढ़ोतरी होगी, तो बीज उपचार को वो मोटो सो उद्देश्य है। बीज उपचार के लाभ की बात करा तो बीजा को अंकुरण प्रतिशत जको बढ़ जाएगो और अंकुरित बीज में समरूपता भी आ जाएगी, फसल ने मरदा एर बीज नित कीड़ा एर व्याधिया शू जको है बचाव हो जाएगो। दलहनी फसलों के बीजा ने राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता और उत्पादकता में बढ़वार हो जाएगी। विपरीत परिस्थितियों में भी स्वस्थ और एक सार विकास है जो को बुंटे गोवेगो, उन्नत पादप संख्या जो की बढ़ जाएगी जैके शू फसल की उत्पादकता में वृद्धि होगी, एर सागे सागे बुंटो स्वस्थ और पूर्ण विकसित बुंटे की जड़ा जकी होगी। उपचारित बीज बीजने शू कीटनाशी और फफूंदनाशी की स्प्रे जकी कम हो जाएगी, जैके शू फसल उत्पादन पर खर्चो जको की कम हो जाएगो, पौधांगे खातर लाभदायक कीटा की भी रक्षा जकी हो जाएगी, तो इंगे अलावा फसलों की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी करने और फसलों पर कीड़ा और बीमारियों को

0: स्प्रे जकी कम हो जाएगी, जैके शू फसल उत्पादन पर खर्चो जको की कम हो जाएगो, पौधांगे खातर लाभदायक कीटांगी भी रक्षा जकी हो जाएगी। तो इंगे अलावा फसलांगे उत्पादकता में भी बढ़ोतरी करने और फसलों पर कीड़ा और बीमारियों को प्रकोप कम शू कम होगा। इन उद्देश्य शू बिजाई शू पहला अपने 100% बीजोपचार करनो बहुत ही जरूरी हुआ है। बीजोपचार करते टाइम अपने एक सावधानी रखनी, बीजोपचार करते टाइम FIR यानी फकीरा के नाम से कर्म है जो को अपने रखनो। तो इनको मतलब है पहल पोता अपने फफूंद नाशक दवाई शू बीज उपचारित करनो, बिंगे बाद कीटनाशी दवाई शू बीज उपचारित करनो और अंत में अपने कल्चर शू बीज जो को उपचारित करनो। तो इन तरीके से अपने जो है बीज उपचारित करांगा तो अपने बीज उपचार से लाभ होगा। अब बात करांगे बीजोपचार अपने क्यों करना पड़े। बीज निर्जमीकरण की बात करा, कई रोगाणु और कीड़ा जका या बंगा प्यूपा जका बीज की सतह पर जका पाया जाए तो अन्य हटाने के वास्ते जकी प्रक्रिया हुआ है बिन बीज निर्जमीकरण क्या है। किसान भाई बीज कीटाणु शोधन की बात करा तो की रोगाणु और कीट जका बीज के अंदर पाया जाए तो आ कीटा रोगाणु ने नष्ट करने खातर बीज कीटाणु शोधन जको कहलावे। बीज संरक्षण की बात करा, बीजा और अंकुरित पौधा ने मृदा में पाए जाने वाला हानिकारक जीवाशु बचाणो बीज संरक्षण जको कहलावे। तो इन हिसाब है जका बीज उपचार अपने करनो बहुत ही जरूरी हुआ है। अब बात करें बीज उपचार की विधियां, तो इनमें एक तो जैविक विधि है, ई विधि शू राइजोबियम कल्चर शू अपा बीजा ने जको उपचारित करा। एक रासायनिक विधि है जका मैं ई विधि में एक तो रसायन के पाउडर ने रोटरी ड्रम में मिला दिया जैसे शू बीज जनित संक्रमण ने रोकण खातर आपा रसायन को प्रयोग है जो करा जिया के थायरा में कैप्टान है या बोर्डो मिक्सचर है आशू। और इनके अलावा तरल रूप में भी बहुत सी दवाइयां हुए तो जगह शू के आपा बीजा को उपचार है जो कर सका। इन तरीके शू आपा जकी भी फसल बीजा भी मैं बीजो उपचार करना बहुत ही जरूरी है, फसल शू अच्छो लाभ है जो ले सका। प्रभु खेत का नहीं चालू, राम राम सा राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतिहरा वास्ते, जिसमें आज जानकारी का विषय था बीजोपचार के लाभ। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुने कार्यक्रम लोक भजन। लोक भजन के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सरदारा राम व साथियों का गाया ये लोक भजन।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक भजन। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से बोल रहे हैं। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 और 11 सेकेंड हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम मानस गान। मानस गान में आज आप सुनेंगे अरायण कांड में भाग संख्या 245।

अत्रि ऋषि को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता गहन वन की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग में विराट राक्षस का वध करके प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया और शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषिवर ब्रह्मलोक जा रहे थे कि तभी उन्होंने श्री राम के वन आगमन का समाचार सुना। तब से ही वे उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में दिन बिता रहे थे।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस गान। मानस गान में आज आपने भाग संख्या 245 सुना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओ, लीजिए अब सुने कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे बुजुर्गों के अनुभव से कैसे लाभ उठाएं। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी हैं, उनके जो अनुभव है उनसे हम कैसे लाभ उठाएं और उस लाभ उनके बातों से हमें क्या लाभ मिलता है और उनके अनुभव हमारे किस काम आते हैं और हमें वो किस तरफ लेकर जाते हैं। तो बात अगर बुजुर्गों की हो तो फिर बुजुर्गों का अनुभव ज्ञान और धैर्य का एक अनमोल खजाना है। उनके जीवन के संघर्षों और सीखों से लाभ उठाकर आप अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों को आसान कर सकते हैं और भविष्य के लिए बेहतरीन निर्णय ले सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने जो अपने जीवन में अनुभव और ज्ञान लिए हैं, अगर हम उनके साथ बैठकर उनके बारे में चर्चा करें, बात करें, तो ये तय है कि हम एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। उनके अनुभव हमारे बहुत काम आ सकते हैं। उनके अनुभवों का सही तरीके से लाभ उठाने के लिए हम कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है हमें। जैसे हम उनकी बातें हैं जो धैर्य से सुने, उनकी कहानियों में छिपी सीख को समझें। जब वे अपने पुराने दिनों, सफलताओं या असफलताओं के बारे में बताएं तो उसे ध्यान से सुने। अक्सर उनकी कहानियों में बड़ी बड़ी समस्याओं के सरल हल छिपे होते हैं। और प्रश्न पूछने की अगर हम बात करें तो यदि आप किसी निर्णय, करियर, वित्तीय या पारिवारिक मामले में उलझे हैं तो उनसे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक लंबा दृष्टिकोण होता है। बिल्कुल, जो उनका दृष्टिकोण है वो हमसे कहीं ना कहीं बेहतर होता है और कहीं ना कहीं बहुत एक लंबा समय लिए अपने आप में होता है। और व्यवहारिक ज्ञान और कौशल से भी हम उनसे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें सीख सकते हैं।

जैसे पारंपरिक ज्ञान की अगर बात की जाए तो उनसे पारंपरिक नुस्खे, बागवानी, खान पान के तरीके या अन्य हुनर सीखें जो किताबों में नहीं मिलते। किताबों में हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो पारंपरिक थी, पर वो भी हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो किताबों में छपी नहीं या छपने से रह गई। इसलिए कुछ ऐसे नुस्खे भी हैं पारंपरिक उनके पास, जो हमें उनके पास बैठने से, सुनने से ही समझ में आ सकते हैं, हम उन्हें सीख सकते हैं। भावनात्मक मजबूती की अगर बात करें तो उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं, उनसे कठिन परिस्थितियों में शांत और सकारात्मक रहने का गुण सीखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि परिस्थितियां इंसान की जैसी भी हों, अगर उस परिस्थिति में इंसान सकारात्मक सोच के साथ शांत रहता है तो उसके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। जीवन में संतुलन बनाना, रिश्तों का महत्व, वे आपको सिखा सकते हैं कि कैसे परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना है। उनके अनुभव बताते हैं कि अंततः रिश्ते और अपनापन ही सबसे अधिक मायने रखता है। बिल्कुल, जीवन में हमारे जो रिश्ते हैं, जो अपनापन है, वो हमारे रिश्तों को अगर हम बना कर रखेंगे, हम उस रिश्ते में प्यार रखेंगे, एक स्नेह रखेंगे, आत्मीयता रखेंगे, तो अंततः यही रिश्ते हमें जीवन में काम आते हैं। समय बिताना और सम्मान करना, अकेलापन दूर करना, उनके साथ नियमित समय बिताने से उन्हें खुशी मिलती है और उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। जी बिल्कुल, अगर हम हमारे बुजुर्गों के साथ नियमित रूप से समय बिताते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके अनुभवों के बारे में बात करते हैं, ये जो चीज़ें हम साझा करते हैं, तो इस बात से उन्हें बहुत खुशी मिलती है और वो मानसिक रूप से भी बड़े स्वस्थ रहते हैं। बुजुर्गों से बात करते समय उनके प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के उस पड़ाव में वो लोग होते हैं जहां उन्हें अपनेपन की और स्नेह की अति आवश्यकता होती है। हो सकता है कि हम यदि युवा हैं तो अपने बुजुर्गों को अनदेखा करें, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि हमसे वो कुछ लेते नहीं हैं, अलबत्ता हमें बहुत कुछ देते हैं। अपने जीवन का अनुभव साझा करते हैं, जिंदगी कैसे जीनी है, जिंदगी में आए उतार चढ़ावों को कैसे देखना है, अपने रिश्तों को कैसे मेंटेन करके रखना है, और हमें व्यवहार कैसा रखना है, हमारा परिवार कैसे खुश रहे, इन तमाम बातों को लेकर उनके अनुभव अगर हम साझा करें, उनसे बात करें, उनसे पूछें, तो हमें जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और प्रत्येक इंसान को बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे लेते कुछ नहीं हैं, पर हमें देते अपने जीवन का पूरा अनुभव है, जो शायद हमें मिल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने वो जीवन पूरा जिया है, और उस जिए हुए जीवन के जो गूढ़ मंत्र हैं, जो अनुभव हैं, अगर वो आपको उनके पास बैठकर मिल रहे हैं, तो हमें इससे चूकना नहीं चाहिए और बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनके साथ बैठना चाहिए। बहरहाल, लीजिए आपको सुनवाते हैं पहले ये गीत, चर्चा आगे भी जारी रखेंगे।

0: क्योंकि जब हम प्राकृतिक से जुड़ते हैं तो हमारा मन शांत होता है और शांत मन में ही सुखद माहौल का निर्माण संभव है। परिवार के साथ बैठकर भोजन करें और दिन भर की अच्छी बातें साझा करें, एक दूसरे के छोटे प्रयासों की सराहना करें, किसी भी बात पर बहस करने से बचें। घर में एक ऐसा स्थान बनाएं जहां आप शांति से बैठ सकें, ध्यान कर सकें, मेडिटेशन कर सकें। जी बिल्कुल, इंसान को अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम देखते हैं, आज का माहौल तनावपूर्ण माहौल है। ऐसे माहौल में जब इंसान घर जाता है तो वहां भी अगर तनाव होगा तो उसके मन को शांति नहीं मिल पाएगी, सुखद अनुभव नहीं ले पाएगा। तो ऐसे में घर का माहौल शांत रखें, सब एक दूसरे की बातों को समझें, उनकी भावनाओं को समझें और अनगरल बहस किसी भी मुद्दे को लेकर नहीं होनी चाहिए। और घर में एक शांत माहौल हो उसके लिए सभी को घर में एक नियमों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि सोने का, उठने का, बैठने का, खाने का और काम का, सभी का समय निर्धारित हो, निश्चित हो, तो इससे बहुत कुछ सुधार हो सकता है। और इंसान को सुखद रहने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, इसलिए मेडिटेशन से ही मन शांत होता है और घर में सुखद माहौल रहता है। बहरहाल आप सुने ये गीत।
1: तो हम चलते हैं।

श्रोता, कार्यक्रम में अब चलते चलते हम बात करते हैं पूर्वाग्रह से कैसे बचें। हाँ, बिल्कुल, पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति, समुदाय या विचार के बारे में बिना सोचे समझे या बिना ही सही जानकारी के नकारात्मक या सकारात्मक पक्की राय बना लेना है। इससे बचने के लिए जागरूकता, खुले विचारों और तथ्यों की परख होना बहुत जरूरी है। तथ्यों पर ही अगर आप विश्वास करेंगे तो पूर्वाग्रहों से मुक्त हो सकते हैं। किसी भी बात या अफवाह पर सीधे विश्वास करने की बजाय उसके पीछे तथ्य, जो फैक्ट छुपे होते हैं, उनको जानें, अपनी राय हमेशा ठोस मजबूत आधार पर बनाएं, दूसरे व्यक्ति की जगह रख कर देखें, खुद को उनकी परिस्थितियों और दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करें। इससे आपके मन में उनके प्रति बनी गलत धारणाएं दूर होंगी। नए लोगों से मिलें और बातचीत करें। जब आप विभिन्न पृष्ठभूमि, धर्म या संस्कृति के लोगों के साथ घुलते मिलते हैं तो आप यह महसूस करते हैं कि सभी इंसान एक जैसे होते हैं। इससे रूढ़िवादी जो हमारी सोच होती है वो दूर होती है। समय समय पर खुद से भी हमें सवाल करने चाहिए कि आप किसी विशेष समूह या व्यक्ति के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या आपकी सोच किसी सुनी सुनाई बात पर आधारित है? विविधता का भी हमें सम्मान करना चाहिए। यह स्वीकार करें कि दुनिया विविधता से भरी है। विचार, खान पान और रहन सहन का अलग होना स्वाभाविक है। इसे गलत मानने की बजाय इसे स्वीकार करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी व्यक्ति को बिना मिले ही या सुनकर उसके बारे में अपने विचार पैदा कर रहे हैं, नकारात्मक विचार खासकर, तो ये एक सबसे बड़ी गलत बात है। क्योंकि जिस व्यक्ति को आप जानते ही नहीं, कोई फैक्ट नहीं है, कोई ठोस आधार नहीं है उसके बारे में, उसके बावजूद भी अगर आप उसके लिए नकारात्मक लाता अपने जीवन में लाते हैं तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि बिना प्रमाण के, बिना ठोस के किसी बात पर विश्वास करना, तो वो बात हुई कि एक लीक है, उसी पे हमें चलना है, उससे अलग हमें नहीं होना है। जबकि आज के समय में बिना ठोस बात, बिना अनुभव के, बिना किसी तथ्य के, अगर आप सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके किसी के लिए अपना मत बनाते हैं तो ये सबसे गलत बात है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को है। लीजिए अब सुने हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचार आप सुनेंगे हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में $5 अरब के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में

0: युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स

0: तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो

0: की परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत से मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम ज़खायर कायम करना भी शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसी कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने बहुत से अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें अहम पेट्रोलियम ज़खायर, तवील मुद्दती LPG सप्लाई और दिफा के मैदान में तआवुन शामिल है। इन मुआहदों पर दस्तखत मगरबी एशिया में जारी महाज़ाराई के दौरान अबू धाबी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के दरमियान आला सतह की बातचीत के बाद किए गए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर की मालियत की सरमायाकारी का अज़्म किया है। वज़ीर आज़म मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में कल UAE पहुंचे थे। मुआहदों में आम शराकत दारी का मुआहदा भी शामिल है, जिस पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी की तेल कंपनियों के दरमियान दस्तखत किए गए, जिसका मकसद भारत की तवानाई की फराहमी को मुस्तहकम बनाना है। इस अमल में पेट्रोलियम के जखायर और रकीक कुदरती गैस नीज रकीक बनाई गई पेट्रोलियम गैस LPG को जखीरा करने की सहूलतें शामिल हैं। वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस मुआहदे से भारत के अहम पेट्रोलियम ज़खायर में UAE की शराकत दारी में इजाफे से 3 करोड़ बैरल्स का इजाफा होगा और इससे भारत में गैस के अहम ज़खायर कायम होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वो अपने दौरे में नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म रॉब जैतन से दोतरफा बातचीत करेंगे और उस मुल्क के बादशाह और मलिका से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के नीदरलैंड्स के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।

0: कोलकाता पुलिस के साबिक कमिश्नर विनीत गोयल भी शामिल हैं। ये कार्रवाई आरजीकर मेडिकल कॉलेज इस्मत दरी और कत्ल केस की तहकीकात में मुबैना कोताहियों के सिलसिले में की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने मुनसिफाना और शफाफ जांच के अज़्म का इरादा करते हुए 12वीं जमात के तलबा के लिए नतीजे के बाद फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतालिक एक नोटिस जारी किया है। नोटिस बोर्ड में कहा गया है कि अपने नतीजे से गैर मुतमईन तलबा दो मरहलों पर मुश्तमिल नज़रसानी के निज़ाम से फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले मरहले में तलबा अपनी जाँच की गई जवाबी कापियों की स्कैन शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं, जिन्हें जायजे के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरे मरहले में तलबा किसी भी फर्क या गलती की तस्दीक करा सकते हैं या मार्किंग स्कीम की बुनियाद पर मखसूस जवाबात की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। CBSE के मुताबिक स्कैन शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें इस माह की 19 से 22 तारीख तक जमा कराई जा सकती हैं, जिसकी फीस 700 रुपये फी मजमून मुकर्रर की गई है। इसी तरह तस्दीक और दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें इस माह की 26 से 29 तारीख के दरमियान जमा कराई जा सकेंगी। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनकरीब मुल्क में कोई भी गरीब शख्स नहीं होगा जिसके पास मुस्तकिल घर न हो। उन्होंने कहा कि सभी के लिए पक्के मकानात की फराहमी मरकजी हुकूमत का पुख्ता अज़्म है। जनाब चौहान महाराष्ट्र में सतारा के मकाम पर मुनक़दा महा आवास अभियान के तहत तामीर शुदा मकानात के इफ्तिताह के मौके पर इज्तिमा से खिताब कर रहे थे।
1: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने ऐलान किया है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए NEET UG 2026 इम्तिहान दोबारा 21 जून को मुनक़िद होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एजेंसी ने उम्मीदवारों और वालिदैन से कहा है कि वो मुसद्दका और मुस्तनद मालूमात के लिए सिर्फ NTA के सरकारी ज़राए पर ही एतमाद करें। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को मुनक़िदा इम्तिहान पेपर लीक होने के इल्जाम के बाद रद्द कर दिया गया था। इस मामले की तहकीकत इस वक्त मरकजी तहकीकती ब्यूरो CBI कर रही है। इसराइल और लबनान ने वाशिंगटन में होने वाले एक और दौरे के मुजाकरात के बाद अपनी जंगबंदी में 45 दिन की तौसी पर इत्तेफाक किया है। अमरीका के महकमे खारजा के तर्जमान टॉमी पिगोट ने कहा है कि 16 अप्रैल को होने वाली जंगबंदी को मजीद 45 दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा ताकि मजीद पेशरफ्त मुमकिन हो। यह फैसला अमरीका की मेजबानी में अमरीका और लबनान के दरमियान 2 रोज तक जारी रहने वाली इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज मुजाकरात के इख्तिताम के बाद किया गया, जो कल मुकम्मल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब पिगट ने कहा कि अमरीकी महकमे खारजा 2 और 3 जून को सियासी मुजाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू करेगा। इसके अलावा इस महीने की 29 तारीख को पेंटागन में सिक्योरिटी से मुतालिक बातचीत का मरहला भी शुरू किया जाएगा, जिसमें दोनों ममालिक के फौजी वफूद शिरकत करेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के इलाकों में आज शदीद गर्मी की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कोंकण और गोवा के इलाकों में भी आज गर्म और हफ्स वाले मौसम की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक अंडमान व निकोबार जजायर में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश हो सकती है। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल्स मुकाबले में आज सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गो जी फी की जोड़ी से होगा। इस दौरान PV सिंधु और लक्ष्य सेन समेत दीगर भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की आलमी नंबर 3 खिलाड़ी अकाने यामागुची से 21-19, 18-21, 15 से हार गई है, जबकि मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन को थाईलैंड के कुनलावुत वितित्सर्न से 19-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के निशाने का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर 4 गेंदों में यह मैच

0: जीत लिया। आज शाम ईडन गार्डन में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी शहर से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुत्तहदा अरब इमारात दौरे को शह सुर्खी बनाया है। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद आल नहयान के साथ हुई दो तरफा मीटिंग के दौरान कई अहम मुआहदे तय पाए, जिनमें LPG की सप्लाई और 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी काबिले जिक्र हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत मगरबी एशिया में अमन के लिए हर मुमकिन तआवुन देने को तैयार है। ब्रिक्स ममालिक ने ग्लोबल साउथ और कसीर कुतबी आलमी निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास में जारी एक सदारती बयान में ये बात कही गई। इस खबर को रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है। अखबारों ने नीट UG 2026 का इम्तिहान दोबारा 21 जून को कराए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग की पीछिंग में हुई मीटिंग में चीन ने मशरिक़ वस्ती में अमन इस्तेहकाम के लिए फौरी और जामे जंगबंदी पर जोर दिया। इस खबर को रोज़नामा इनकलाब ने नुमाया तौर पर शाया किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात ने बहुत से माहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम ज़खायर कायम करना भी शामिल है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जाँचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसीह कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, आप हमें हमारे FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन सकते हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 और 10 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं ये भक्ति रचना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपने ये भक्ति रचना सुनी। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं। लीजिए अब सुने हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हमारे जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जा रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वगणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

0: समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात से नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उन्होंने आबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: नीदरलैंड्स के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल राज उन्नति की बैठक में 33,039 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रोजेक्ट्स को तय टाइमलाइन के अनुसार पूरा करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले की पीने के पानी से जुड़ी शिकायतों को तत्परता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राष्ट्र हित में ईंधन की बचत और ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता

0: प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द ई बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित शहरों में डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के काम को पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा सहित अन्य प्रमुख शहरों में ई बसें चलाई जाएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद जयपुर में इस महीने होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को स्थगित कर दिया गया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एनटीए ने पिछले 24 घंटों में देश भर में अनेक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मामले में अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एसआई भर्ती 2021 परीक्षा 20 सितंबर को दोबारा होने जा रही है। इसके लिए अभ्यर्थी आज से 30 मई तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पते को अपडेट कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस परीक्षा में वही 3,83,097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे जो पहले दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इस परीक्षा में अवसर नहीं दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में आज से प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। 14 जून तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। प्रगणक मकान की निर्माण सामग्री और सुविधाओं को लेकर 33 सवाल पूछेंगे। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशक विनेश सिंघवी ने बताया कि प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ स्वयं गणना का काम कल पूरा हुआ। इसमें राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों ने खुद अपनी सूचनाएं दर्ज कराने के विकल्प का उपयोग किया है। आज शनि जयंती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, हवन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर 12 जिले के सीताबाड़ी में मेला भर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मेला सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है।
1: आदिवासी लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध सीताबाड़ी के धार्मिक मेले का शुभारंभ आज होगा। ये मेला सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसे सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है। ये मेला ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार ये वही पवित्र स्थान है जहाँ माता सीता ने निर्वासन के दौरान वाल्मीकि आश्रम में निवास किया था। ये मेला रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ 7 पवित्र कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूरज कुंड आदि है, जिनमें ज्येष्ठ अमावस्या को स्नान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जहां लवकुश का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यहां समुदाय अपनी परंपराओं का जश्न मनाता है और उनके पारिवारिक विवाह भी होते हैं। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12।
0: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इसका उद्देश्य मॉनसून से पहले डेंगू रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना और मच्छरों के नियंत्रण के प्रयास करना है। ये बीमारी एडीज मच्छर के काटने से होता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मच्छरों के नियंत्रण के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि समय पर पहचान और इलाज नहीं मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
2: विश्व डेंगू दिवस पर आप सभी से अपील है कि डेंगू से बचाव के लिए सजग रहें, अपने घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें, कूलर, गमले और टंकियों की नियमित सफाई करें, पूरी बांह के कपड़े पहने और मच्छरदानी या रिपेलेंट का उपयोग करें। याद रखें, डेंगू का इलाज नहीं, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। आइए मिलकर स्वच्छता अपनाएं और डेंगू मुक्त समाज बनाएं।
0: राज्य में कल से तापमान में बढ़ोतरी और हीट वेव का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण

0: पूर्वी भागों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। पिछले 2-3 दिन से कई हिस्सों में जारी आंधी बारिश से पारे में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। गर्मी के कल से फिर जोर पकड़ने के आसार हैं। इस बीच कल फलौदी और चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया। अन्य स्थानों पर पारा सामान्य के आसपास या उससे नीचे रिकॉर्ड हुआ। वहीं जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग तथा शेखावटी अंचल में कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। आईपीएल क्रिकेट में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रात चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। 38 गेंद में 90 रन की पारी खेलने के लिए मिशेल मार्श को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वगणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत कड़ है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10:40 हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम मरुमंगल। मरुमंगल में हमारे आज के कलाकार हैं गंगाराम सोलंकी। तो लीजिए अब सुने इनकी गाई कुछ लोक रचनाएं।

श्रोताओ, मरुमंगल का यह कार्यक्रम इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कड़ से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं गंगाराम सोलंकी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मरुमंगल। मरुमंगल के इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार थे गंगाराम सोलंकी, जिनकी गाई लोक रचनाएं आपने सुनी। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोता फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राजा और रानी इस फिल्म के गीत के साथ। इसे स्वर दिया है अलका याग्निक और कुमार शानू ने।

श्रोताओ, फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने फिल्म फूल और कांटे का ये गीत। इसे स्वर दिया है अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू ने। इसके गीतकार

समीर और संगीत नदीम शरवण का।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: श्रोताओ, फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आपका दोस्त संजय चौधरी आपके साथ है। लीजिए अब सुने फिल्म खुद्दार का ये गीत, स्वर कुमार शानू और अलका याग्निक के हैं।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे रंग फिल्म का ये गीत, स्वर कुमार शानू और अलका याग्निक के थे। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने फिल्म आशिकी का ये गीत, स्वर कुमार शानू के हैं। इसके गीतकार हैं समीर और संगीत नदीम शर्वण का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम में लीजिए अब सुने आंदोलन फिल्म का ये गीत, स्वर कुमार शानू और अलका याग्निक के।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने दीवाना फिल्म का ये गीत स्वर कुमार शानू के।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओ, फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में

आपके साथ आपका दोस्त संजय चौधरी हाजिर है। लीजिए अब सुने सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत, स्वर कुमार शानू और अलका याग्निक के हैं।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

कुछ प्यारे प्यारे मीठे गीतों के साथ हम हाजिर हैं। पहला गाना चंद अशार के साथ कि कितना अच्छा सोच रहा हूँ, कितना अच्छा सोच रहा हूँ, तेरा चेहरा सोच रहा हूँ, तू भी इश्क करे है मुझसे, कितना प्यारा सोच रहा हूँ।

दोस्तों, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना। फिल्म थी जीने की राह, और ये है आपके लिए अगली पेशकश। सुनिए, ये आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की और फिल्म है गोरी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत गाना। ये फिल्म थी गौरी। और अब लता की आवाज़ में एक और खूबसूरत गाना, फिल्म है मेरा साया।

0: हाय, ऐसे में तेरी आवाज कहीं से आई जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नहगा आसमानों से कोई शोक सितारा टूटे।
1: चोरी के शेर है आप तो कुछ यूं कहते।

दोस्तों, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना, फिल्म थी मेरा साया, और अब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना, ये फिल्म है अपना बना के देखो।

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये गाना, ये फिल्म थी अपना बना के देखो। ये प्यारे प्यारे, ये मीठे मीठे पुराने फिल्मी गाने आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। किसी शायर ने कहा, वो जिनकी लय हम भूल गए वो मीठे गीत पुराने हैं, वो जिनकी लय हम भूल गए वो मीठे गीत पुराने हैं, जो सच्चे रिश्ते नाते थे वो आज सभी बेगाने हैं। तो जो बेगाने हैं उन्हें अपना बनाने के लिए मीठे मीठे प्यारे गीतों के साथ हम हाजिर हैं, और ये है आपके लिए अगली पेशकश।
1: इजाजत है
2: इरशाद।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे उषा तिमुथी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना। ये फिल्म थी मेरा सलाम और यह है अगली पेशकश। दोस्तों, गाने में कहा गया कि दिल तो चाहता है कि सीने से लगा लूँ तुमको, दिल तो चाहता है कि सीने से लगा लूँ तुमको, रंग पर आज तबीयत है मगर कैसे कहूँ। ऐसे में ये गाना सुनिए।

दोस्तों, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत गाना। फिल्म थी ठोकर और ये है अगली पेशकश आपके लिए।

दोस्तों, आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपके लिए। फिल्म थी अनमोल मोती और अब उल्फत फिल्म का ये नगमा सुनिए, ये दो गाना।

दोस्तों आप सुन रहे थे उल्फत फिल्म का ये खूबसूरत दो गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। और अब हम आपको सुनवाते हैं गाल गुलाबी नैन शराबी फिल्म का ये गाना। ये आवाज़ें हैं कृष्णा कल्ले और मोहम्मद रफ़ी की। आइए सुनिए।

गाल गुलाबी नैन शराबी, आपने इस फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत दो गाना सुना, कृष्णा कल्ले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये बहुत प्यारे प्यारे पुराने गाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से, और ये है आपके लिए अगला दो गाना, आइए सुनें।

दोस्तों, आप सुन रहे थे ये बहुत ही प्यारा सा दो गाना। आवाज़ें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। आज के फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की आपको पुराने प्यारे प्यारे बहुत ही मधुर गाने सुनवाने की। और अब वक्त इतना बचा है कि एक प्यारा सा गाना हम आपको और सुनवाते हैं। आइए सुनिए।

ये आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की, और ये गाना है फिल्म मालिक से। सुनिए।

आप सुन रहे थे ये दो गाना महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ में, और ये फिल्म थी मालिक। और अब इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न करने की नरेश वर्मा को अनुमति दें। नमस्कार।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ के प्रसारण।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनिएगा 12:05 पर आपके खतों और व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी कार्यक्रम अनुरोध गीत। 12:30 पर सुगम संगीत में चंद खूबसूरत गज़लें आपके लिए। 12:50 पर कार्यक्रम होगा खेत खलिहान। इसमें जानकारी का विषय रहेगा बेल वाली सब्जियों की खेती। 1 बजे आप रोज़ाना सुना करते हैं आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में समाचार। 1:05 पर आपके लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत। कार्यक्रम में जानकारी के विषय रहेंगे मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में क्या करें, सेहत के लिए ज़रूरी है खुलकर हंसना, और राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मौसमी फल चीकू के बारे में बातचीत होगी और साथ ही आप सुनेंगे चंद खूबसूरत गाने। कार्यक्रम पेश करेंगी मंजू शर्मा। 2 बजे आप सुनिएगा मिड डे न्यूज़ और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, और 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत में कुछ और मधुर गाने। 3 बजे आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस का प्रसारण होगा।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम में युववाणी। जानकारी के विषय रहेंगे निःशुल्क जांच योजना, बीसलपुर परियोजना और पिंक सिटी के बारे में जानकारी, जीवों पर दया, इस विषय पर बातचीत की जाएगी और साथ में चंद खूबसूरत गाने होंगे पुराने। कार्यक्रम पेश करेंगे रोहिताश शर्मा। 6 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। 6:05 पर आपके लिए कार्यक्रम होगा सराई की। 6:30 पर हिंदी में समाचार। 6:40 पर ज़िले की चिट्ठी। 6:45 पर राजस्थानी में समाचार हम अपने आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल, इसमें बातचीत होगी लू और गर्मी के बारे में और नीम तेल स्प्रे कैसे करें इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। हाइड्रोपोनिक्स खेती के बारे में भी आप जानकारी सुनेंगे, बाजार भाव मौसम उपलब्ध होने पर। और इसके अलावा आपके लिए एक भेंट वार्ता पेश की जाएगी प्रगतिशील किसान कानाराम भुनवाल से। नवीन सिसोदिया की बातचीत आप चौपाल में सुनेंगे और साथ में चंद लोक गीत और लोक भजन चौपाल में होंगे। 7:45 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा जिसमें चंद भक्ति रचनाएं आप सुनेंगे और 8 बजे एक ही फिल्म से कार्यक्रम में किसी एक बहुत खूबसूरत फिल्म की जानकारी के साथ आपको गीत सुनवाई जाएगी।

रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज़ 89 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से, और 9:15 पर चंद खूबसूरत गज़लें होंगी सुनिएगा आप, और 9:30 पर दिल्ली से रिले होगा राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती कार्यक्रम। ग्यारह बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी

जी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से और 11:10 पर सभा समाप्ति उद्घोषणा होगी। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:05 हो चुके हैं। अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। नरेश वर्मा की तरफ से पहला गाना हम आपको सुनवाते हैं। चंद खत आपके हमारे पास पहुंच चुके हैं। फरमाइशी खतों के साथ हम आपको सुनवाते हैं पहला गाना। फिल्म है जब प्यार किसी से होता है। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, और इस गाने की फरमाइश हम तक पहुंची है। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, नीलमपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, रमापुरी और RS पुरी। मंडी डबवाली से जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, संजय अनिल और मीनू बकोलिया। अलीका डबवाली से बसंत सिंह चन्न, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, JS नायक और शोभा नायक। दौलतपुरा श्रीगंगानगर से शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित और हेमंत। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा की तरफ से ये खत मिला है और इसी गाने को पसंद किया है। श्रीगंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा और इनके बहुत से साथी, और ये खत हमें मिला है मालवा रेडियो श्रोता संघ, परमिलागंज आलोट। रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल पायल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा की तरफ से, और यही गाना हम आपको सुनाना चाहते हैं। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश की तरफ से ये खत मिला है और इसी गाने को पसंद किया है। ये हमारे श्रोता हैं शोलाल बेनीवाल, शांति, मंजू, हेमंत और मोहित। आप लिखते हैं दौलतपुरा श्रीगंगानगर से, और मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, शाइना अनमोल, गुरुचरण ग्रोवर और इनके परिवार के लोग। आप सभी साथियों को हम सुनवा देते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। सुनिए।

दोस्तों, आप सुन रहे थे ये दो गाना, जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का। अगले गाने की फरमाइश के लिए आपके व्हाट्सएप संदेश हम पढ़ते हैं। आप हैं रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाभली से गजानंद येले, नवदीप, विश्वदीप और अशोक येले। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। आप लिखते हैं मऊनाथ भंजन यूपी से। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। यही गाना हम आपको सुनवाना चाहते हैं। नाई वाला से हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। आप हैं खोखरा वाली से विनोद बाराशाह, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन। कासम कॉलोनी सनावद से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रिश खत्री, नूरू मीना, इरफान मीना, कासिफ मीना। घमंडिया से जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु, शिवम ढूकिया। और ये संदेश मिला है मानपुर साबित मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अतारुर रहमान, शेख हबीबुर रहमान की तरफ से। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, और आपके साथ हैं जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। बीकानेर से संदेश मिला है विकास जाखड़, भावना जाखड़, हेमंत जाखड़, तेज प्रताप जाखड़, वान्या जाखड़ और अभिमन्यु जाखड़ की तरफ से। और ये संदेश है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की तरफ से। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा। बांडीवाला फाजिलका से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, बसंत राव तायड़े, बसंत राव भोजने, निवर्ती आडोकर की तरफ से संदेश मिला है। और आप हैं सादुल शहर से राम कुमार रिवार्ड और चंद्रकला रिवार्ड। आपके लिए आ रहा है ये गाना।

कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवाना चाहते हैं। ये आवाज़ें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की, और इस गाने को पसंद करने वाले हमारे साथी हैं आप सब। खारिया ढाणी सिरसा से सतवीर सिंह बजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया, बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और इनके बहुत से साथी। आपने संदेश भेजा है अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, मदन लाल वर्मा, कीर्ति वर्मा और साथ में हैं इनकी फैमिली, लिखते हैं बुर्ज हनुमानगढ़ नियर मांडनी फाजिलका से। आप साथियों से निवेदन है कि आप अगर हिंदी में संदेश हमें लिखेंगे तो आपके नाम का उच्चारण हम सही तरीके से कर पाएंगे। जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण, और यही गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं। कविता गौरव मानसी अनिल अरोड़ा मोतीनगर नई दिल्ली से, और आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, लक्सर हरिद्वार से आपने संदेश भेजा है। टोरोवाल पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका थांदी, प्रियम वामिका और वाणी।

थांदी की तरफ से संदेश हमें मिला है। आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार जाखोद से, शंभुदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। आप हैं लोगढ़ ठाकुरवाला से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह गिल, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और आपके बहुत से साथी। फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। आप हैं फाजिलका से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवंशी खेड़ा, बी आर खेड़ा, जीवन सिंह बूक और खेड़ा परिवार। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आशिफ शेख। यह संदेश हमें मिला है डबवाली से बसंत सिंह चन्न और इनके साथियों की तरफ से, इनका खत हमने शामिल कर लिया। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा और आपके बहुत से साथी, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, बंटी बबली वर्मा, आपने संदेश भेजा है बठेना पाटन दुर्ग से। और यह संदेश मिला है अलीका डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी, सोनू और रजनी की तरफ से। आप सभी साथियों के लिए आ रहा है ये खूबसूरत दो गाना लता और मुकेश की आवाज़ में और ये फिल्म है संजोग, सुनिए।

0: दोस्तों, आपने संजोग फिल्म का ये खूबसूरत गाना सुना। कार्यक्रम का आखिरी गाना हम आपको सुनवाते हैं उषा खन्ना और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। फिल्म है कंगन। ये गाना आप सबके लिए आ रहा है। आप है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड, बहलोल नगर से हरीश हेरी, जगतार जहरी, सुशील डेलू, राकेश चाहर और आपके साथी। और ये संदेश हमें मिला है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो की तरफ से, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। और आप हैं नरेश मल्होत्रा नेटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद जी मल्होत्रा। आपने लिखा है खेल बाजार पानीपत से और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल और डुग्गू सिक्का की तरफ से संदेश मिला है। यही गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा, हरिपाल कौर, आप सब करनाल से, और नोहर हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु पवन, और इनके साथ हैं रामसरा नोहर से सादक खान, हनीफ खान और जसवीर सिंह। ये संदेश हमें मिला है अरायन से बनवारी लाल, जयपाल, बिमला, सोनू, मोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, जयपाल की तरफ से। यही गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं। आप हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू। ये संदेश मिला है बीकानेर से रानी बाजार से रानी झाम्ब और बिट्टू झाम्ब की तरफ से, और मलोट से पटेल नगर से राज डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप, आरजू जाजोरिया और गुड्डू की तरफ से। और आप हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह, और जोधपुर सूर्यनगरी से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी, बेबी बाय हिमाक्ष। आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गाना।
1: झुके जो तेरे नैना

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। ये आकाशवाणी का काउटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:30 हो चुके हैं। अब सुनिए सुगम संगीत में चंद बेहतरीन गजलें। मिली जुली गजलें हैं। पहली गजल आप सुने गुलाम अली की आवाज़ में, आइए सुनते हैं।

सुगम संगीत के आगाज़ में आप सुन रहे थे गुलाम अली को, और अब सुनिए मेहदी हसन की आवाज़ में ये गज़ल।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:50 हो चुके हैं। अब सुनिए खेत खलिहान। जानकारी का विषय है बेल वाली सब्जियों की खेती। जानकारी दे रहे हैं भारत भूषण शर्मा। आइए सुनते हैं।

किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, चाहे ग्रामीण परिवेश हुए या बात करें आप शहरी क्षेत्रांगी, सब्जी

किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, चाहे ग्रामीण परिवेश हुए या बात करें आप शहरी क्षेत्रां की, सब्जी जी की है बा आप दोनों टाइम अपने घर में नहीं तो एक टाइम तो जरूर ही बने। हरी सब्जियां जी की है बने खाने को प्रमुख कारण वो भी है कि जिका विटामिन्स अपने शरीर ने जरूरी हुए, चाहे विटामिन ए हो, चाहे विटामिन बी हो या सी हो, इनको जिको प्रमुख स्रोत है वो हरी सब्जियां ही है। और हरी सब्जियां में भी जे आप बात करा तो तरबूज, खरबूजो, चप्पन कद्दू, तोरी, लौकी, करेलो, टिंडा, खीरा, ककड़ी, ए वह सब्जियां हैं जिकी बेल वाली सब्जियां हैं और बड़ी सुलभ है, क्योंकि शहरी क्षेत्रा में या ग्रामीण क्षेत्रा में कठे भी आपके घर ही आपा घरगो जी को प्रांगण हुए बिंग माँ भी कोई छोटी मोटी क्यारी लगा गए और आंगू भी जानत कर सका। बाकी जी का किसान भाई व्यवसायिक तरीके से आपके खेत में बीजे बांगो कहनो ही के है, और बहुत सा किसान जी का है वह करे भी है, घर की खाने वाली भी हो जाए और सागे बाजार में बेचण वास्ते भी किसानी इंगी करे। कठे न कठे मुनाफे की खेती है, इन वास्ते हर किसान जी को है वो बिजाई करे। इन वास्ते जलवायु की जे आप बात करा तो सामान्य रूप से जी की अपनी जलवायु है 30-35 डिग्री के आसपास उपयुक्त जलवायु हुए। सब्जी ने सबसे ज़्यादा खतरो हुए पाले से, तो पाले के अंदर इंगी ना तो बुआई हुए ना कटाई हुए। सबसे बड़ी बात है कि बेल वाली सब्जी आप साल के दोनों हिस्सा में ले सका, जिकी अब आने लग रही है वे आप फरवरी मार्च में बीजा, और अब जिकी आगे आसी पाले से पहला वे अब जून जुलाई में आप बीजांत कर सका। और इन सारी सब्जियां की खासियत है कि आंगो जिको भी कृषि कार्य है वो लगभग 100 है, तो सारी सब्जियां बेली आप बीज सका और कर सका। बात करा किस मांगी तो तोरी जी की है बी वास्ते पूसा चिकनी पूसा नसदार, क्योंकि इनमें दो तरीके की तोरी आवे, एक चिकनी तोरी हुए एक धारीदार तोरी हुए। चिकनी तोरी की जिकी किस्म है बाह गलगल तोरी जिके नापा पूसा चिकनी के हो, और धारीदार जिकी तोरी है बिंग मावे पूसा नसदार। बिंग अलावा लौकी है बिंग मा पूसा सुगर प्रोलिफिक लंबी भी आवे गोल भी आवे। करेलो है तो कोयम्बटूर लौंग पूसा दो मौसमी। टिंडे की बात करा तो बीकानेरी ग्रीन हिसार सिलेक्शन एक। खीरे में जिकी बढ़िया किस्म है और अपने क्षेत्र में बीजी जावे बिंगमा पूसा संयोग जापानीज लौंग ग्रीन। ककड़ी जिकी है बा लखनऊ अगेती करनाल सिलेक्शन। इन तरीके से जिकी किस्म इंगी आपने क्षेत्र के मैं माने वह किस्म है और अपनी भूमि जिकी है बाई ने बढ़िया पैदावार देवे अपन। इन वास्ते अपन ने दोमट जिकी उपजाऊ माटी है बिंगी भूमि उपयुक्त हो। सबसे बड़ी बात कह भूमि गमा जल निकास के सही प्रबंधन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पानी जे बेल के अंदर खड़े रहे तो कठे न कठे जटगलन जैसी समस्या आ जाए या उखेड़े जैसी समस्या आ जाए, तो भडवार जी की है बेलगी बा होवे कोनी और नुकसान हो जाए। बुआई के समय आप बात करी भी अब जे करनी है तो जून जुलाई को समय भी या फरवरी मार्च में भी बीज का विशेष तौर से ध्यान रखा कि बीजा ने बोने से पहला उपचारित जरूर करा। बी वास्ते आप बाउस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करा। बीजा ने खेत में बीजन से पहला 24 घंटा तक पानी में भिगो के रखा तो हल्को बीज तिरन लाग जाए को बिना आप काट दें। अगेती फसल लेने वास्ते आप तापक्रम जी को है वो 20 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, तो भी वास्ते आप

0: बीजाने सीधा खेत में ना बीज गए, और प्लास्टिक की जी की थैलियां वह बंगमा भी जिकिन आप पनीरी कहाँ या आप क्यारी कहाँ बा तैयार कर सका। थैलियां तैयार किया करना है कि थैलियां वहाँ 1/3 भाग तो चिकनी माटी को ले लें आप, इतो ही बराबर बालू रेत को ले लें, और इतो ही ले लें आप गोबर की जी की चोखी सड़ेड़ी खाद वह बिना मिला के एक थैली के वहाँ 2-3 बीज आप बीज दें। आ बीजा ने बीजन के बाद में आप फुहारे छूंगी सिंचाई कर सका। वातावरण ने गर्म करने वास्ते या इंगमा उमस पैदा करने वास्ते आप थैलियां ने एक तिरपाल छू ढक भी सका या पोलीथीन छू ढक भी सका। बीजू तापक्रम जी को है वो उपयुक्त हो जाएगा और बीज को अंकुरण होने के बाद में इन्हें खेत में आप स्थानांतरण कर सका। बिंग बाद में आप खेत में बिजाई कर सका। खेत में कई तरीके से खाद उर्वरक को ध्यान रखना है तो आप 1 बीघे खेत के अंदर कम कम 50-60 क्विंटल जी की चोखी सडेड़ी गोबर की खाद है, चाहे गोयू सड़ों लेवा, चाहे आप घर में भी किसान भाई जी का पशुपालन करे बांगन लाज भी खाद ने आप 1 बीघे गां कम कम 50-60 क्विंटल चोखी तरियाँ रला दें। इनके अलावा 20-25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस, 10 किलोग्राम पोटास की शुद्ध मात्रा आपने खेत ने देनी हुए और आ देनी आप बीघे के हिसाब से। बिजाई के समय आप 1/3 भागी नाइट्रोजन को देवा, बाकी फास्फोरस पूरी और पोटास की मात्रा पूरी खेत में आपने गालनी है। बच्चे डीज की नाइट्रोजन है बिंगी मात्रा 2 बिरिया में बुआई के 1 महीने बाद एर जब बेल पर फूल आने लग जाए भी समय में आपने देनी है। इन तरीके से आप बिजाई जी की है बा कर सका। आगे चाल गए इंगमा जिया कीड़ा कांटा की बात करां, कीट की बात करां तो लाल भ्रंग कीट जी को है वो मुख्यतः आ सारी बेल आली जी की किस्म है आम पर आवे। इंगो जी को प्रौढ़ कीट हो है वो पीले रंगो सिर चमकीलो वैगो, सुंडिया जमीन में रह गए जड़ ने काट के पौधे ने नुकसान पहुंचावे और पौधों पूरी तरह खत्म भी कर दिया। बिंग नियंत्रण वास्ते आप कार्बोरिल 5% चूरण को 5 किलो प्रति बीघे की दर्शों बुरकाव कर सका। फलमक्खी की बात करा तो आ फल को जिको अंदर लो गुदो वे बिंग अंदर अंडा देवे और अंडा छू कीड़ा निकल गए गुच्छे ने खा जे और फल ने नुकसान कर दे और फल जिको है वो एकदम खराब हो जाए। इन नियंत्रण वास्ते आप मेलाथियान 50 ताकत या डाई मेथोएट 30 ताकत 125 मिलीलीटर प्रति बीघे के हिसाब से छिड़काव करा। जे आपने जरूरत पड़े तो 10-15 दिन के अंतराल पर आप पुट्ठो इन्हें दोहरा भी सका। इन तरीके से आप बेल आली जी की सब्जियां हैं बांगो उत्पादन कर सका, बीजांत कर सका। और विशेष तौर से ध्यान रखा कि बूंटे से बूंटे की दूरी, कतार से कतार की दूरी, ताकि हवा पानी जी को है वो बूंटे ने अच्छी तरह मिलते रहे और बेलां जी की है बा पूरी तरीके से स्वस्थ बढ़वार कर सके। इनको आप ध्यान रखा। खरपतवार जी का है बा समय समय पर आप निकाल तरवा तो बढ़िया पैदावार आप ले सकांगा। अब हूँ चला चलू, राम राम सा राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान, जानकारी का विषय था बेल वाली सब्जियों की खेती। जानकारी दे रहे थे भारत भूषण शर्मा। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1 बजने वाला है, अब जयपुर से समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे। विभिन्न आयु वर्ग, क्षेत्रों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय समुदाय के सदस्य पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स

0: बंधों, प्रवासी समुदाय की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में आज से प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। 14 जून तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। प्रगणक मकान की निर्माण सामग्री और सुविधाओं को लेकर 33 सवाल कर रहे हैं। उधर झुंझुनू में आज विधायक राजेंद्र भांबू ने जनगणना टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री भांबू ने कहा कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का काम है। पहले चरण की जनगणना का मूल निवास से कोई संबंध नहीं है। जहां लोग वर्तमान में रह रहे हैं उन्हें वहीं पर जनगणना में शामिल होना चाहिए। उन्होंने लोगों से प्रगणकों का सहयोग करने की अपील की। इस बीच प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ स्वगणना का काम कल पूरा हुआ। इसमें राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों ने खुद अपनी सूचनाएं दर्ज कराने के विकल्प का उपयोग किया है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से इस बीमारी की रोकथाम के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जागरूकता बढ़ाना और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण और चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूती से जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्वच्छता, सतर्कता और समय पर इलाज को डेंगू से बचाव के प्रभावी उपाय बताया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वस्थ और स्वच्छ राजस्थान के निर्माण में सहभागिता निभाने का आग्रह किया है। हनुमानगढ़ जिले के खेतों में फिर से सफेद सोना यानी नरमा की फसल लहलाएगी। कृषि विभाग ने सीजन के लिए 1,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नरमा बुवाई का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 65,000 हेक्टेयर अधिक है। पिछली बार गुलाबी सूंडी कीट के प्रकोप से फसल को हुए नुकसान को देखते हुए इस बार प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत 19 प्रमाणित कंपनियों के बीटी कॉटन बीजों को ही मान्यता दी गई है। और अब मौसम। राज्य में अगले 1-2 दिनों में गर्मी दोबारा से प्रचंड रूप ले सकती है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। इससे हीट वेव का असर फिर देखने को मिल सकता है। वहीं पिछले 2-3 दिनों से कई स्थानों पर जारी आंधी बारिश की गतिविधियों से लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। कई शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ, जो सामान्य से कम है। हालांकि उमस और गर्मी का असर बना हुआ है। उधर फलौदी और चित्तौड़गढ़ में कल अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार मापा गया। उदयपुर और कोटा में दिनभर गर्म हवाओं का असर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज 6 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट बताया गया है। राजधानी जयपुर में भी बादल छाए रहने और अंधड़ की संभावना है। आज शनि जयंती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, हवन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर 12 जिले के सीताबाड़ी में मेला भर रहा है। ये मेला सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है। वहीं अनेक महिलाएं वट सावित्री का व्रत कर रही हैं। इस अवसर पर वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं को लेकर एक नोटिस जारी किया है। इसमें CBSE ने कहा है कि अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं होने वाले छात्र छात्राओं को 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का फायदा ले सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज़ पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज़ पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार सभी बहनों और श्रोताओं को, मैं हूं आपकी सखी मंजू शर्मा, कार्यक्रम महिला जगत लेकर। और अब हम शुरू करते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा, कि अगर मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति का सामना करना पड़ जाए तो कैसे उसका सामना करें। इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती, दुर्घटना, अचानक बीमारी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सांस लेने में तकलीफ, गंभीर चोट या किसी बच्चे का बेहोश हो जाना। मैंने ऐसी स्थितियों में कुछ मिनटों की सही जानकारी और सही समझ किसी की जान बचा सकती है। अब बात करते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी होती क्या है। मेडिकल इमरजेंसी वे स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन, अंग या स्वास्थ्य पर तुरंत खतरा हो और बिना देरी के चिकित्सा सहायता की आवश्यकता पड़े, जैसे बेहोशी, अत्यधिक खून का बहना, सीने में तेज़ दर्द, सांस लेने में कठिनाई, अचानक लकवा या बोलने में परेशानी, गंभीर जलन, जहरीले पदार्थ का सेवन कर लेना या तेज़ बुखार के साथ दौरे पड़ना। इसके लिए सबसे पहला कदम है कि घबराएं नहीं, स्थिति को समझें, गहरी सांस लेकर स्थिति का अवलोकन करें कि मरीज़ होश में है या नहीं, सांस चल रही है या नहीं, खून बह रहा है या नहीं, दर्द कहाँ है, वगैरह वगैरह। स्थिति के अनुसार एम्बुलेंस को तुरंत कॉल करें, आसपास के लोगों से सहायता मांगें, परिवार के किसी मुख्य सदस्य को सूचना दें। बिना देरी के सभी काम किए जाएं, क्योंकि समय ही जीवन है।

मैनू, गीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले कौन कौन से प्राथमिक उपाय किए जा सकते हैं। एम्बुलेंस आने तक प्राथमिक उपचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि मरीज बेहोश हो तो उसे समतल जगह पर लिटाएं, कपड़े ढीले कर दें, मुंह में कुछ न डालें। सांस नहीं आ रही हो तो मरीज को सीधा बैठाएं, भीड़ हो तो उसे दूर रख करें। यदि आप प्रशिक्षित हों तो CPR दें, और अगर अत्यधिक खून बहने की स्थिति हो तो साफ कपड़े से घाव पर दबाव डालें। घायल अंग को ऊपर की ओर रखें। टूर्निकेट तभी लगाएं जब बहुत ज़रूरी हो। और बहनों, अगर जलने की स्थिति का सामना करना पड़े तो जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालें। बर्फ़ तेल या टूथपेस्ट का उपयोग ना करें। जले हिस्से को साफ कपड़े से ढकें। तो बहनों, अगर घर में ऐसी इमरजेंसी का सामना करना पड़े तो इसके लिए प्रत्येक घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स आवश्यक रूप से होना चाहिए। ज़रूरी फ़ोन नंबर लिख कर रखें। परिवार को भी बेसिक फर्स्ट एड सीखनी चाहिए। नज़दीकी अस्पताल के रास्ता पता होना चाहिए या किसी ऑटो रिक्शा चालक का मोबाइल नंबर पता होना चाहिए। और अगर सड़क पर या पब्लिक स्पेस पर किसी को इमरजेंसी में दिखें तो मदद से पीछे ना हटें। मानवता पहले है। आपसे जितना संभव हो सहायता करें, क्योंकि मानव धर्म सर्वोपरि है।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: बहनों, अब बात करते हैं हंसने हंसाने की। हंसना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लाभकारी भी है। आज की तेज़ रफ्तार, तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली में लोग हंसना भूलते जा रहे हैं। काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक चिंताएं और सामाजिक तनाव के चलते मनुष्य को भीतर से थका देते हैं। ऐसे में खुलकर हंसना एक ऐसा सरल उपाय है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए वरदान सिद्ध होता है। बहनों, हंसी केवल होंठों की मुस्कान नहीं, बल्कि यह मन की प्रसन्नता, संतोष और सकारात्मकता की अभिव्यक्ति है। जब हम खुलकर हंसते हैं तो हमारा शरीर, मन और मस्तिष्क एक साथ सक्रिय होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ये हंसी कृत्रिम नहीं, बल्कि हृदय से निकलनी चाहिए। ऐसी हंसी ही स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी होती है।

बहनों, खुलकर हंसने से मन हल्का होता है, तनाव कम होता है, नकारात्मक विचारों में कमी आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। हंसने से रक्त संचार बेहतर होता है, हृदय स्वस्थ रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हंसते समय फेफड़ों में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन आती है, जिससे हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है। इससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और पेट संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है। आजकल हंसी को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में भी अपनाया जा रहा है। योग के रूप में, सामूहिक रूप में हंसने का अभ्यास कराया जाता है। ये जो योग सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी है।

बहनों, हमारे राज्य राजस्थान को प्राय रेगिस्तान, मरुस्थल और शुष्क जलवायु के लिए जाना जाता है, परंतु इसके बावजूद ये राज्य अनेक सुंदर ऐतिहासिक और विशाल झीलों से समृद्ध है। सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों में फैली हुई है। ये झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देश का एक बड़ा भाग नमक प्राप्त करता है। यह प्रवासी पक्षियों का प्रमुख स्थल है। दूसरी उदयपुर की पहचान कही जाने वाली पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ। ये एक कृत्रिम झील है। इसके बीच में जग मंदिर और लेक पैलेस स्थित है और यही झील उदयपुर को झीलों की नगरी बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है। और बहनों, पिछोला झील के साथ जुड़ी हुई एक झील है फतेह सागर झील। यह झील 3 द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। यह जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झीलों में अगर बात करें तो वो है जैसमंद झील, जिसे ढेबर झील भी कहा जाता है। ये झील वन्य जीवों और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तो आगे और भी झीलों की हम बात करेंगे राजस्थान की, उससे पहले ये गीत सुन लेते हैं।

बहनों, गीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की प्रमुख झीलों की। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया। इस झील के किनारे राज प्रशस्ति शिलालेख हैं। ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आना सागर झील की अगर बात करें तो यह अजमेर शहर में स्थित है। इसका निर्माण चौहान शासक अरनो राज ने करवाया था। यह झील अजमेर का प्रमुख आकर्षण है। पुष्कर झील की बात करें, यह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसे हिंदुओं की सबसे पवित्र झीलों में गिना जाता है। यहाँ 52 घाट हैं और कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ मेला लगता है। नक्की झील की बात करें, राजस्थान की एकमात्र पर्वतीय झील है ये। यह माउंट आबू में स्थित है और यह पर्यटन और नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। गड़ीसर झील जैसलमेर की जीवन रेखा मानी जाती है। यह झील मरुस्थलीय क्षेत्र में जल संरक्षण का उत्तम उदाहरण है। ऐसे ही बालसमंद झील जोधपुर के पास स्थित है। सिलीसैड झील अलवर जिले में स्थित है। तो बहनों, राजस्थान की झीलें केवल जलाशय नहीं हैं, बल्कि यहाँ की संस्कृति, इतिहास, आस्था और जीवन शैली का परिचायक हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम राजस्थान की इन अमूल्य झीलों को संरक्षित रखें और इनके महत्व को समझें।

बहनों, अब बात करते हैं कुछ खान पान की। जी हाँ, हम बात करते हैं मौसमी फल चीकू की। यह एक ऐसा फल है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को पसंद आता है। इसका स्वाद जितना लाजवाब है, इसके पोषक गुण उतने ही चमत्कारी हैं। यह मुख्य रूप से सर्दियों और वसंत ऋतु के बीच उपलब्ध होता है। यह फल बाहर से भूरा और अंदर से हल्का भूरे रंग का, मुलायम और रसीला होता है। इसका स्वाद प्राकृतिक रूप से मीठा होता है, इसलिए ये मिठाई जैसा आनंद देता है। चीकू में अनेक आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं, जैसे प्राकृतिक शर्करा, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व। इन पोषक तत्वों के कारण चीकू को एक ऊर्जा देने वाला फल माना जाता है। चीकू को कई तरीकों से अपने आहार में शामिल किया जा सकता है, जैसे ताज़े फल के रूप में चीकू शेक या स्मूदी के रूप में, फ्रूट सलाद में, बच्चों के लिए चीकू प्यूरी के रूप में। चीकू का उपयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए ताकि अधिक मात्रा में खाने से वजन बढ़ने और गैस की समस्या ना हो। तो बहनों, इस विषय पर चर्चा और भी करेंगे, उससे पहले ये गीत सुन लेते हैं।

बात कर रहे थे मौसमी फल चीकू की। तो बहनों, माना चीकू स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसे कच्चे रूप में ना खाएं, यानी चीकू को कच्चा ना खाएं। मधुमेह रोगी इसे सीमित मात्रा में खाएं। रात में चीकू खाने से बचें, हमेशा साफ़ सुथरा और पका हुआ चीकू खाएं। और बहनों, कोई भी फल या खाद्य वस्तु हो, उसका प्रयोग अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि एक वस्तु जो किसी के लिए बेहद लाभकारी हो सकती है, वहीं दूसरी ओर

वही वस्तु किसी के लिए बेहद असहज भी हो सकती है। खैर, मौसमी फलों को अपने भोजन का हिस्सा बनाइए और प्राकृतिक सेहत का आनंद उठाइए।

बहनों, अब बात करते हैं कुछ जीवन उपयोगी बातों की। तो समय का मूल्य समझना चाहिए, यानी समय एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। हर दिन का छोटा सा कार्य लक्ष्य बनाना जीवन को व्यवस्थित करता है। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, रोज़ थोड़ी थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ विचार रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं, इसलिए जब भी बोलें सम्मानजनक भाषा बोलें, संयमित भाषा बोलें, इससे अपनापन बढ़ता है। उम्र कोई भी हो, सीखना बंद किया तो प्रगति रुक जाती है। नई जानकारी आत्मविश्वास बढ़ाती है। धन का सही प्रबंधन करें, यानी आय से अधिक खर्च न करें, थोड़ी सी बचत आदत बनाएं, आवश्यकता और इच्छा में फर्क समझें। परिवार और मित्रों से संवाद जीवन में संतुलन लाता है। मोबाइल से ज़्यादा अपनों को समय दें। और बहनों, समस्याएं स्थायी नहीं होती, धैर्य और सकारात्मक सोच से रास्ता निकल जाता है। स्वयं का भी सम्मान करें, जो खुद को समझता और स्वीकार करता है वही दूसरों को भी सम्मान कर पाता है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करना सीखें, आभार मन को शांत और जीवन को सुखी बनाता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही जीवन को बड़ा और सुंदर बनाती हैं। तो बहनों, अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में

0: 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी ही नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता

0: के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
0: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: आपसे कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम

0: राजस्व स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 2:30 हुए हैं। कार्यक्रम सुने फिल्म संगीत।

सभी सुनने वाले दोस्तों को हमारा नमस्कार। कुछ खूबसूरत गाने आपके लिए। पहला नगमा हम आपको सुनवाना चाहते हैं खुदगर्ज़ फिल्म से। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की। ये गाना लिखा है इंदीवर और फारूक कैसर ने, संगीत है राजेश रोशन का। सुनिए।

दोस्तों, आपने खुदगर्ज़ फिल्म का ये दो गाना सुना, साधना सरगम और मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ों में, और ये है अगली पेशकश।

अब सुनिए किशन कन्हैया फिल्म का ये दुगाना अमित कुमार और साधना सरगम और साथियों की आवाजों में। ये गाना अनवर सागर का लिखा है और संगीत राजेश रोशन का है। सुनिए।

दोस्तों, आप सुन रहे थे किशन कन्हैया फिल्म का ये गाना साधना सरगम और अमित कुमार की आवाज़ों में, और ये है कार्यक्रम की अगली पेशकश। सुनिए।

0: ये फादर का बच्चा कौन है?
1: फादर का बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।
2: मर्द फिल्म का ये गाना सुनिए, एस जानकी, शब्बीर कुमार, अमिताभ बच्चन, केतन देसाई और अनु मलिक की आवाजों में। सुनते हैं।
3: ए सुन रुबिया, तुमसे प्यार हो गया।
4: सच?

दोस्तों, आपने मर्द फिल्म का ये गाना सुना। इस गाने में आवाज़ें थी शब्बीर कुमार, एस जानकी, अमिताभ बच्चन, केतन देसाई और अनु मलिक की। ये गाना लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और ये संगीत था अनु मलिक का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से, और ये है आपके लिए अगली पेशकश।

और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाना चाहते हैं शहनशाह फिल्म का ये गाना। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की। ये गाना लिखा है आनंद बख्शी ने और ये संगीत है अमर उत्पल का। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, आप सुन रहे थे शहनशाह फिल्म का ये दो गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। आनंद बख्शी का गाना था, संगीत अमर उत्पल का था। और अब इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। हमारे इन मीटर्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ का प्रसारण। इस वक्त दोपहर के 3 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों के इंतज़ार के बाद आप सुनेंगे उर्दू सर्विस के प्रोग्राम, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इंतज़ार करें।

पेपर्स, ये आकाशवाणी है। सहपहर के 3 बजे हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशात का आगाज़ होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामेन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के अलावा डीडी फ्री डिश पर। आइए एक नज़र डालते हैं इस मजलिस में नशोनाले प्रोग्रामों पर।

3:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद। सपहर 3:30 आप सुनेंगे बुंदेलखंड के लोकगीत। शाम 4:00 आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक।

4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामने था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशो नले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रीडेश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। सपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप माजी दिल्ली से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नेदरलैंड्स के अपने हमनसब रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलिका मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई और बाहमी तिजारत के शोबों समेत कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया है। दोनों मुल्कों ने कलीदी नौयत के पेट्रोलियम और गैस रिजर्व समेत कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। फौज के सरबराह जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दों को पनाह देना और सरगर्मियां खत्म करे। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद नेदरलैंड्स के वजीर आजम रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और इज्जत मआब शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मिलने जाएंगे। ये दौरा बाहमी रिश्तों से आगे बहुत अहमियत का हामिल है और तवक्को है कि इसके जरिए हाल ही में मुकम्मल हुए भारत यूरोप आज़ाद तिजारती समझौते के तनाजुर में वसी भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात वजूद में आएंगे। इससे कबल वजीर आजम के नेदरलैंड्स पहुंचने पर नेदरलैंड्स के वजीर खारजा ने उनका इस्तकबाल किया। भारतीय बरादरी और नेदरलैंड्स के ग्रुपों ने सकाफती प्रोग्राम और मौसीकी पेश करके उनका खैर मकदम किया। मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों, खित्तों और मजाहब पर मुश्तमिल भारतीय बरादरी के मम्बरान ने रिवायती रक्स और मौसीकी पेश की। वजीर आजम मोदी के पहुंचने पर मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से फजा गूंज उठी। वजीर आजम ने नेदरलैंड्स में भारतीय बरादरी के जरिए उनके खैर मकदम की कुछ झलकियां साझा की हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उनका इस्तकबाल

शानदार तरीके से किया गया और जिसमें कथक, ओडिसी, भारत भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम और गरबा रक्स भी शामिल था। वजीर आजम भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगे और नीदरलैंड्स के तजारती लीडरों से बातचीत करेंगे। ये तकरीब वजीर आजम के नीदरलैंड्स का दौरे का एक अहम हिस्सा है। इस तकरीब में भारत और नीदरलैंड्स के रिश्तों, भारतीय बिरादरी के रोल और भारत की पूरी दुनिया में पहुंच पर खास तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारतीय बिरादरी और नीदरलैंड्स की सरकर्दा कंपनियों के सीईओ से खिताब करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई जैसे शोबों में कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है, जिसमें नीदरलैंड्स को आलमी रहनुमा की हैसियत हासिल है। तजारती नुक्ताए नज़र से नीदरलैंड्स भारत का एक अहम शराकत दार और बरामदाती और सरमायाकारी के बड़े मरकजों में से एक है। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात यूएई ने बहुत से अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें अहम पेट्रोलियम ज़खायर, तवील मुद्दती एलपीजी सप्लाई और दिफा के मैदान में तआवुन शामिल है। इन मुआहदों पर दस्तखत मगरबी एशियाई में जारी महाजाराई के दौरान अबू धाबी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के दरमियान आला सतह की बातचीत के बाद किए गए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर की मालियत की सरमायाकारी का अज्म किया है। वजीर आजम मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में कल यूएई पहुंचे थे। मुआहदों में अहम शराकत दारी का मुआहदा भी शामिल है, जिस पर इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी की तेल कंपनियों के दरमियान दस्तखत किए गए, जिसका मकसद भारत की तवानाई की फराहमी को मुस्तहकम बनाना है। इस अमल में पेट्रोलियम के जखायर और रकीक कुदरती गैस नीज रकीक बनाई गई पेट्रोलियम गैस एलपीजी को जखीरा करने की सहूलियतें शामिल हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस मुआहदे से भारत के अहम पेट्रोलियम जखायर में यूएई की शराकत में इजाफे से 3 करोड़ बैरल का इजाफा होगा और इससे भारत में गैस के अहम जखायर कायम होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब अली फाले काजिम अल जैदी को इराक के वजीर आजम का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ तवील अरसे से चले आ रहे अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और उसने तमाम शोबों में बाहमी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम और मजबूत करने का तहैया कर रखा है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि वो दोनों मुल्कों की खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और चीन ने उनके दौरे के मौके पर अहम तजारती समझौते किए हैं। उन्होंने दौरे के नतायज को अहमियत का हामिल करार दिया। वो चीन से वापस आते हुए फजाइया के तैयारे में नामा निगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। जनाब ट्रंप ने बताया कि सदर शी जिनपिंग के साथ बातचीत के बाद चीन ने 200 बोइंग तैयारे खरीदने से इत्तेफाक किया है और बाद में मजीद तैयारों की खरीदारी का ऑर्डर मिलने का इम्कान है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आज़ादी का ऐलान करने पर ताइवान को खबरदार किया है। ताइवान के सदर लाई चिंगते ने कहा था कि ताइवान को आज़ादी का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही अपने आप को एक खुद मुख्तार मुल्क तसव्वुर करता है। अमरीका कवानीन के तहत दिफाई साजो सामान के जरिए ताइवान की हिमायत करता रहा है और उसने चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात भी बरकरार रखे हैं। ट्रंप ने इससे कबल कहा था कि उन्होंने इस खुद मुख्तार जजीरे नुमा मुल्क से मुतालिक कोई वादा नहीं किया था। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। अमरीका ने कहा है कि वो ताइवान की आज़ादी की हिमायत नहीं करता और एक चीन पॉलिसी के तहत चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों को पनाह देना और भारत के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करना होंगी। नई दिल्ली में सेना संवाद में खिताब करते हुए जनाब द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस तरह की सरगर्मियां जारी रखता है तो उन्हें यह फैसला करना होगा कि क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को खोला जाएगा और अमरीका ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जनाब ट्रंप ने मगरबी एशिया के बहरान के दौरान अमरीकी इकदाम के दिफा करते हुए कहा कि वो वही करते हैं जो दुरुस्त होता है।

0: ट्रंप ने अमेरिका के साथ जारी मुजाकरात के सिलसिले में भी ईरान पर नुक्ताचीनी की और इल्जाम लगाया कि तेहरान के साथ तय पाने वाले समझौतों का बाकायदा एहतराम नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि ईरान जब भी कोई समझौता करता है तो बाद में ऐसा रवैया अख्तियार करता है जैसे पहले कभी कोई बातचीत ही न हुई हो। उन्होंने ये बात फिर कही कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शुमाल मशरकी जमहूरी अवामी कांगो में इबोला मर्ज के फैल जाने से 65 अफराद की जान तलफ हो गई और सैकड़ों दूसरे अफराद इस बीमारी से मुतासिर बताए जाते हैं। वहां इस बीमारी के फैलने और सरहद पार तक पहुंच जाने के अंदेशे की बिना पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अमराज के कंट्रोल और रोकथाम से मुतालिक अफ्रीका के मरकज ने बताया है कि लगभग 246 अफराद के इबोला बीमारी में मुबतला होने का अंदेशा है और सेहत और इलाकाई सेहत हुकाम ने आज तालमेल और फौरी कार्रवाई के लिए एक मीटिंग तलब की है। इसराइल और लबनान ने वाशिंगटन में होने वाले एक और दौर के मुजाकरात के बाद अपनी जंग बंदी में 45 दिन की तोसी पर इत्तफाक किया है। अमेरिका के महकमे खारजा के तर्जुमान टॉमी पिगॉट ने कहा है कि 16 अप्रैल को होने वाली जंग बंदी को मजीद 45 दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा ताकि मजीद पेशरफ्त मुमकिन हो सके। भारत की सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में मर्दों के डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज बैंकॉक में सेमीफाइनल में मलेशिया के गो जे फेई और नूर इजुद्दीन को हराया। भारत की जोड़ी ने 82 मिनट में मलेशिया की जोड़ी को 19-21, 22-20 और 21-16 से हराया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के अपने हम मनसब रॉब जेटन के साथ बातचीत करेंगे और शाह
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश आरजू फिल्म से आशा भोसले, मुबारक बेगम और हमनवाओं की आवाज़ों में। मौसीकी शंकर जयकिशन की। फिल्म आरजू।

चांद और सूरज फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। मौसीकी सलील चौधरी की थी। और ये सुनिए गाइड फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ।

अभी आप सुन रहे थे मुख्तलिफ फनकारों के गाए हुए बुंदेलखंडी लोकगीत। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशा जारी हैं। लीजिए सुनिए कुछ फिल्मी नगमे। फिल्मी मौसिकी का आगाज कर रहे हैं लावारिस फिल्म के नगमे से, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। मौसिकी कल्याण जी आनंद जी की।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश हाथ की सफाई फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं गुलशन बावरा और मौसीकी तरतीब दी है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: ये था सुहाग फिल्म का नगमा, आशा भोसले और शशि कपूर की आवाज़ों में, बोलते आनंद बख्शी के, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। और लीजिए अब सुनिए मनचली फिल्म का नगमा, किशोर कुमार और लीना चंद्रावरकर की आवाज़ों में।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा
1: अच्छा जी,
2: एक बहाना बन गया अच्छा
1: अच्छा

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश अमीर गरीब फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, और दूसरी आवाज़ है किशोर कुमार की।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे अमीर गरीब फिल्म का नगमा, और यह है जुगनू फिल्म का नगमा जिसमें लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं किशोर कुमार। मौसीकी SD बर्मन की और नगमा निगार आनंद बख्शी।

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: यह है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश बॉबी फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ। नगमा निगार आनंद बख्शी और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
3: पहले तुम,
1: पहले तुम,
3: पहले तुम,
1: पहले तुम,
3: तुम,
1: तुम,
3: तुम,
1: तुम,
3: तुम,
1: तुम,
3: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: बॉबी फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में। इस नगमे के साथ ही फिल्मी मौसीकी का ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: अब आप असगर अली से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की अहम खबरें। फ़ौज के सरबराह जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो भारत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों को पनाह देना और सरगर्मियां ख़त्म करे। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 के बाद से जारी किए गए ज़ात के सर्टिफिकेट की फिर से जांच के अहकाम जारी किए हैं। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के लिए सवालों के जवाब के पर्चों की फिर से जाँच के लिए 2 मरहलों का ऐलान किया है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रन की रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। भारतीय फ़ौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों को पनाह देना और भारत के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करना होगी। नई दिल्ली में सेना संवाद में खिताब करते हुए जनाब द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस तरह की सरगर्मियां जारी रखता है तो उन्हें यह फैसला करना होगा कि क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे का हिस्सा बनना चाहता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और इज्जत मआब शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलिका मैक्सिमा से मिलने जाएंगे। ये दौरा बाहमी रिश्तों से आगे बहुत अहमियत का हामिल है और तवक्को है कि इसके ज़रिए हाल ही में मुकम्मल हुए भारत यूरोप आज़ाद तजारती समझौते के तनाजुर में वसी भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात वजूद में आएंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म के नीदरलैंड्स पहुंचने पर नीदरलैंड के वज़ीर खारजा ने उनका इस्तकबाल किया। भारतीय बिरादरी और नीदरलैंड्स के ग्रुपों ने सकाफती प्रोग्राम और मौसीकी पेश करके उनका खैर मकदम किया। मुख्तलिफ उम्र के लोगों खित्तों और मजाहिब पर मुश्तमिल भारतीय बिरादरी के मेम्बरान ने रवायती रक्स और मौसीकी पेश की। वज़ीर आज़म मोदी के पहुंचने पर मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से फिजा गूंज उठी। वज़ीर आज़म ने नीदरलैंड्स में भारतीय बिरादरी के जरिए उनके खैर मकदम की कुछ झलकियां साझा की हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उनका इस्तकबाल शानदार तरीके से किया गया और जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम और गरबा रक्स भी शामिल था। वज़ीर आज़म भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगे और नीदरलैंड्स के तजारती लीडरों से बातचीत भी करेंगे। नीदरलैंड्स के अपने दौरे के अख्तिताम पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल स्वीडन पहुंचेंगे, जो उनके 5 मुल्कों के दौरे का तीसरा मरहला होगा। वज़ीर आज़म स्वीडन के रहनुमाओं के साथ दोनों मुल्कों के मजबूत इकतसादी ताल्लुक

निकालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ तवील अरसे से चले आ रहे अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और उसने तमाम शोबों में बाहमी रिश्तों को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत करने का तहिया कर रखा है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि वो दोनों मुल्कों की खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। भारत के इदारों ने पहली बार 182 करोड़ रुपये मालियत की कैपटेगन मनशियात को कब्ज़े में लिया है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने यह जानकारी दी और यह भी कहा कि सरकार ने भारत को मनशियात से पाक मुल्क बनाने का तहिया कर रखा है। जनाब अमित शाह ने कहा कि मगरबी एशिया जाने वाली मनशियात को कब्ज़े में लेने और इस सिलसिले में एक गैर मुल्की शख्स की गिरफ्तारी इस बात की दरख्शां मिसाल है कि हम मुल्क में मनशियात को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मुल्क में एक ग्राम भी नशावर अशिया न तो आने देगी और न अपने इलाके से गुजरने देगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मनशियात की कंट्रोल से मुतालिक शोबे के जांबाज अहलकारों को मुबारकबाद दी। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 से जारी किए गए जात पात से मुतालिक तमाम सर्टिफिकेट की फिर से तस्दीक का हुक्म दिया है। हुक्काम का कहना है कि गुज़श्ता 14 बरस के दौरान जारी किए गए इन दस्तावेजात के जवाज़ और असलियत के बारे में सवालात उठाए जाते रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस अरसे के दौरान दर्ज फहरिस्त ज़ातों कबीलों और दीगर पसमांदा तबकों को ज़ातों के बारे में लगभग 1,69,00,000 सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इनमें से बहुत से सर्टिफिकेट द्वारे सरकार कैंप की तवसुत से तकसीम किए गए। सब डिवीज़नल अफसर और ज़िला सतह के अहलकार हर सर्टिफिकेट की जांच करेंगे। अगर ये साबित हुआ कि कोई भी सर्टिफिकेट गलत जानकारी या बेकायदगी से जारी किया गया है तो कानून के मुताबिक उसे मनसूख कर दिया जाएगा। हाल ही में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नज़रसानी के दौरान जिन अफराद के नाम हदफ किए गए हैं उन पर भी इस हिदायत का इतलाक़ होगा। उनके और उनके ज़ेरे किफ़ालत अफराद के ज़ात से मुतालिक सर्टिफिकेट्स का भी जायज़ा लिया जाएगा और अगर ज़रूरी हुआ तो उन्हें मनसूख कर दिया जाएगा। नीति आयोग के एक वफ़ ने मगरबी बंगाल सरकार के आला अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की ताकि मरकज़ और रियासत के दरमियान ताउन और इश्तराक को मज़ीद बढ़ाया जा सके। मीटिंग में एडिशनल सेक्रेटरी रोहित कुमार और सेहत WCD और SDG के प्रोग्राम डायरेक्टर राजीव कुमार सेन ने शिरकत की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के तलबा के इम्तहानात के नतायज के ऐलान के बाद एक नोटिस जारी किया है जिससे इम्तहानात के अमल में मुनसिफाना तौर तरीक़ों और शफाफियत की तस्दीक होती है। नोटिस में कहा गया है कि जो तलबा अपने नतायज से मुतमईन नहीं हैं वो दो मरहलों वाले नजरसानी निज़ाम से फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले मरहले में तलबा ऑनलाइन अपने स्कैंड शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं जिन्हें जायजे के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरे मरहले में तलबा किसी भी फ़र्क या गलती की तस्दीक करा सकते हैं या मार्किंग स्कीम की बुनियाद पर मखसूस जवाबात की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। CBSE के मुताबिक स्कैन शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें इस माह की 19 से 22 तारीख तक जमा कराई जा सकती हैं जिसकी फ़ीस 700 रुपये फ़ी मजमून मुकर्रर की गई है। इसी तरह तस्दीक और दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें इस माह की 26 से 29 तारीख के दरमियान जमा कराई जा सकेंगी। 2027 की मरदमशुमारी के मुताबिक आज से राजस्थान में घर घर जाकर आदादोशुमार जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस मरहले में पहले पूरी रियासत में मकानों की गिनती और उनकी फहरिस्त बंदी की जाएगी और ये काम जून की 14 तारीख तक जारी रहेगा। इस काम के दौरान मकानों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल और वहाँ दस्तयाब सहूलियात के बारे में 33 सवालात पूछे जाएंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और चीन ने उनके दौरे के मौके पर अहम तजारती समझौते किए हैं। उन्होंने दौरे के नतायज को अहमियत का हामिल करार दिया। वो चीन से वापस आते हुए फ़िज़ाइए के तैयारे में नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आज़ादी का ऐलान करने पर ताइवान को खबरदार किया है। ताइवान के सदर लाई चिंग टी ने कहा था कि ताइवान को आज़ादी का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही अपने आप को एक खुद मुख्तार मुल्क तसव्वुर करता है। भारत की सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी
थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में।

0: के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज बैंकॉक में सेमीफाइनल में मलेशिया के गो जी फे और नूर इजुद्दीन को हराया। भारत की जोड़ी ने 82 मिनट में मलेशिया की जोड़ी को 19-21, 22-20 और 21-16 से हराया। 2019 और 2024 में कामयाबी के बाद भारत की इस जोड़ी का ये सीजन का पहला फाइनल और टूर्नामेंट का तीसरा फाइनल है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। फौज के सरबराह जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दों को पनाह देना और सरगर्मियां खत्म करे। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 के बाद से जारी किए गए जात के सर्टिफिकेट की फिर से जांच के अहकाम जारी किए हैं। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के लिए सवालों के जवाब के पर्चों की फिर से जांच के लिए 2 मरहलों का ऐलान किया है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पज़ीर होती हैं।
1: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के ठीक 5 बजे हैं। आइए युवाणी सुने।

नमस्कार। युवाणी के आज के इस अंक के साथ सभी सुनने वालों को रोहिता शर्मा की ओर से। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में बातें हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात यही कि आज का दिन एक ऐसे कवि का दिन जिन्होंने नई कविता को नए आयाम दिए, उनका लिखा यूं समझें कि संवेदना का लिखना है। नाम उनका मंगलेश डबराल, उत्तराखंड के आप रहने वाले, यानी जन्म आपका उत्तराखंड में हुआ। विविध पुरस्कारों से पुरस्कृत मंगलेश डबराल की इस कविता के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का आगाज करें कि शायद वहाँ थोड़ी सी नमी थी या हल्का सा कोई रंग, शायद सिरहन या उम्मीद, शायद वहाँ एक आंसू था या एक चुंबन, याद रखने के लिए शायद वहाँ बर्फ थी या छोटा सा एक हाथ या सिर्फ छूने की कोशिश, शायद अंधेरा था या एक खाली मैदान या खड़े होने भर की जगह, शायद वहाँ एक आदमी था अपने ही तरीके से लड़ता हुआ।

कार्यक्रम के आरंभ में आपने सईद राही की गजल सुनी चित्रा सिंह की आवाज में। दोस्तों, दिन आज मंगलेश डबराल का, आज उन्हीं की कविताओं के साथ कुछ गाने अपने सुनेंगे, यूं कुछ बातें मौके बेमौके की करते रहेंगे। ये कविता जिसका रचना काल 1997 का है, कहीं मुझे जाना था। कहते हैं कवि मंगलेश डबराल कि कहीं मुझे जाना था, नहीं गया। कुछ मुझे करना था, नहीं किया। जिसका इंतजार था मुझको, वो यहां नहीं आया। खुशी का एक गीत मुझे गाना था, गाया नहीं गया। ये सब कुछ नहीं हुआ तो लंबी तान मुझे सोना था, सोया नहीं गया।

ये सोच सोच कर कितना सुख मिलता है। न वो जगह कहीं है, न वो काम है, न इंतजार है, न वो गीत है, और नींद भी कहीं नहीं है।

इंदिवर का गाना अभी आपने सुना अनुराधा पटवाल की आवाज में। अनजान का एक गाना सुनेंगे बात मंगलेश डबराल की इस कविता के साथ। पहाड़ पर लालटेन, ये डबराल साहब का एक चर्चित कविता संग्रह। इसमें एक कविता है तुम्हारा प्यार। तुम्हारा प्यार लड्डुओं का थाल है जिसे मैं खा जाना चाहता हूं। तुम्हारा प्यार एक लाल रुमाल है जिसे मैं झंडे सा फहराना चाहता हूं। तुम्हारा प्यार एक पेड़ है जिसकी हरी ओट से मैं तारों को दिखता हूं। तुम्हारा प्यार एक झील है जहां मैं तैरता हूं और डूब रहता हूं। तुम्हारा प्यार पूरा गांव है जहां मैं होता हूं।

गाना भी आपने सुना, अनजान का लिखा हुआ मनर उदास और सतियों की आवाज़ों में। दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पुरोधा मंगलेश डबराल को, जिनका जयंती आज का दिन। एक उनकी कविता, कविता की पीठ पे एक गजल आप सुनेंगे, प्रेम करती स्त्री। प्रेम करती स्त्री देखती है एक सपना रोज, जागने पर सोचती है क्या था वो, निकालने बैठती है अर्थ। प्रेम करती स्त्री यकीन नहीं करती किसी का, कंघा गिरा देती है, दर्पण में नहीं देखती खुद को, सोचती है मैं ऐसे ही ठीक हूं। प्रेम करती स्त्री ठगी जाती है रोज, उसे पता नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है, कौन ठग रहा है, कौन है खलनायक, पता नहीं चलता कहां से शुरू हुई कहानी। दुनिया को समझती है वो गोद में बैठा हुआ बच्चा, निकल जाती है अकेली सड़क पर, देखती है कितना बड़ा फैला शहर, सोचती है मैं रह लूंगी यहां कहीं।

अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में मीर तकी मीर की ये गज़ल सुनी। मौसिकार थे खय्याम। अगला गीत सुने उससे पहले मंगलेश डबराल की ये कविता उस स्त्री का प्रेम। वो स्त्री पता नहीं कहाँ होगी जिसने मुझसे कहा था वे तमाम स्त्रियां जो कभी तुम्हें प्यार करेंगी मेरे भीतर से निकल कर आई होंगी, और तुम जो प्रेम मुझसे करोगे उसे उन तमाम स्त्रियों से कर रहे होगे, और तुम उनसे जो प्रेम करोगे उसे तुम मुझसे कर रहे होगे।

ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आप इस वक्त आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। युवाणी ये कार्यक्रम है जिसे आप मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा FM पर हम मिलेंगे 100.1 MHz पर। बात मंगलेश डबराल की, उनकी एक कविता है मेरा दिल। एक दिन जब मुझे यकीन हो गया कि मेरा दिल ही सारी मुसीबतों की जड़ है, इस हद तक कि अब वो खुद एक मुसीबत बना हुआ है, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया और लाचारी के साथ बोला, डॉक्टर ये मेरा दिल है, लेकिन ये वो दिल नहीं है जिस पर मुझको कभी नाज था। मिर्ज़ा गालिब का एक शेर, के अर्ज़े नियाज़े इश्क़ के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे मुझको नाज था वो दिल नहीं रहा। डॉक्टर भी कम अनुभवी नहीं था, इतने दिलों को दुरुस्त कर चुका था कि खुद दिल के पेशेवर मरीज से कम नहीं लगता था। उसने कहा, तुमने ज़रूर मिर्ज़ा गालिब को गौर से पढ़ा है, मैं जानता हूँ ये एक पुराना दिल है। पहले ये पारदर्शी था, लेकिन धीरे धीरे अपारदर्शी होता गया और अब उसमें कुछ भी दिखना बंद हो गया है। वो भावनाएं सोखता रहता है और कुछ प्रकट नहीं करता, जैसे एक काला वीवर सारी रोशनी सोख लेता हो। लेकिन तुम अपनी हिस्ट्री बताओ। मैंने कहा, जी हाँ आप शायद सही कहते हैं, मुझे अक्सर लगता है मेरा दिल जैसे अपनी जगह पर नहीं है और ये पता लगाना मुश्किल है कि वो कहाँ है। कभी लगता है वो मेरे पेट में या हाथों में चला गया है, अक्सर यही भ्रम होता है कि वो मेरे पैरों में रह गया है, बल्कि मेरे पैर नहीं ये मेरा दिल ही है जो इस मुश्किल दुनिया को पार करता आ रहा है। डॉक्टर अपना पेशा छोड़कर दार्शनिक बन गया। हाँ हाँ उसने कहा, मुझे देखते ही पता चल गया था कि तुम्हारे जैसे दिलों का कोई इलाज नहीं है, बस थोड़ी बहुत मरम्मत हो सकती है, कुछ रफू वगैरह। ऐसे दिल तभी ठीक हो पाते हैं।

जब कोई दूसरा दिल भी उनसे अपनी बात कहता हो। और तुम्हें पता होगा ये ज़माना कैसा है, इन दिनों कोई किसी से अपने दिल की बात नहीं कहता, सब उसे छिपाते रहते हैं। इतने सारे लोग लेकिन कहीं कोई रू नहीं, इसलिए तुम्हारा दिल भी अपनी जगह छोड़कर इधर उधर भागता रहता है, कभी हाथ में कभी पैर में।

दोस्तों, अभी आपने तलत महमूद की आवाज़ में हसरत जयपुरी की लिखी ये गज़ल सुनी। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। आइए आगे सुने उससे पहले एक कविता कि कविता दिन भर थकान जैसी थी। कविता दिन भर थकान जैसी थी और रात में नींद की तरह। कविता दिन भर थकान जैसी थी और रात में नींद की तरह। सुबह पूछती हुई, क्या तुमने खाना खाया रात को?

अभी आपने जावेद अख्तर की ये गजल सुनी, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में मौसिककार जगजीत सिंह। दोस्तों, युववाणी के बहाने आज याद कर रहे हैं पुरोधा कवि मंगलेश डबराल को, पहाड़ पर लालटेन के कवि मंगलेश डबराल को। अगला नगमा

लेकिन उससे पहले आपकी ये कविता गहरे भावों की, ये कविता कि जब भी खुद पर निगाह डालता हूं पलक झपकते ही माँ स्मृति में लौट आती है। मैं याद करता हूं कि उसने मुझे जन्म दिया था, कभी कभी लगता है वो मुझे लगातार जन्मती रही। पिता ने मुझ पर पैसे लुटाए और कहा, शहरों में भटकते हुए तुम कहीं घर की सुध लेना भूल न जाओ। दादा ने पिता को नसीहत दी, जैसा हुनरमंद मैंने तुम्हें बनाया उसी तरह अपने बेटे को भी बनाओ। दोस्तों ने मेरी पीठ थपथपाई, मुझे उधार दिया और कहा, उधार प्रेम की कैंची नहीं हुआ करती। जिससे मैंने प्रेम किया उसने कहा, मेरी छाया में तुम जितनी देर रह पाओ उतना ही तुम मनुष्य बन सकोगे। किताबों ने कहा हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीजों को बदलने की बेचैनी पैदा हो सके। कुछ अजीबोगरीब है जीवन का हाल, वो अब भी जगह जगह भटकता है और दस्तक देता है, मांगता रहता है अपने लिए कभी जन्म, कभी पैसे, कभी हुनर, कभी उधार, कभी प्रेम, कभी बेचैनी।

आशा भोसले और भूपेंद्र की आवाज़ों में आपने हसन कमाल का ये गाना सुना। दोस्तों, आज जयंती का दिन मंगलेश टपराल का, जिनका जन्म आज ही के दिन 1948 को हुआ, 9 दिसंबर 2020 को आपका देहांत हुआ था। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, और नए युग में शत्रु, ये सभी आपके कविता संग्रह हैं। ओम प्रकाश स्मृति सम्मान 1982 में, 1989 में

श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हम जो देखते हैं कविता संग्रह भी आपको मिला। इसके अलावा भी आपको अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार मिले। सबसे बड़े सम्मान, सबसे बड़े पुरस्कार ये कि पाठकों ने आपकी कविताएं सराही और आज भी भाव और संवेदना से भरी आपकी कविताएं वो पढ़ते हैं। बहरहाल आखिरी प्रोग्राम उनकी इस रचना के साथ गाना आप सुनें।

इसी गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त रोहिता शर्मा को इजाजत दें। बात इतनी के साथ मंगलेश डबराल की कि जो कुछ भी था जहां तहां हर तरफ शोर की तरह लिखा हुआ, उसे ही लिखता मैं संगीत की तरह। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से मीडियम वेव 326.72 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर बोल रहे हैं। संध्या के 6 बज चुके हैं। लीजिए हमारी केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय सुनिए।

संध्या 7 बजे एक ग्रामीण परिवार अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल। इस कार्यक्रम में खेतीबाड़ी से संबंधित विषयों के अलावा आज आपकी भेंट होगी प्रगतिशील किसान से। किसान हैं कानाराम भुवाल और इनसे बातचीत करेंगे नवीन सिसोदिया। इसके अलावा लू और गर्मी से बचाव, कृत्रिम ड्रोन का उपयोग, मृदा में जैविक कार्बन का महत्व, बाजार भाव और मौसम की जानकारी उपलब्ध होने पर गीत और भजन सुनवाए जाएंगे। कुछ भक्ति गीत आप सुनेंगे संध्या 7:45 पर और फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे। सुगम संगीत में चंद गजलें आपकी नजर की जाएगी रात 9:15 पर और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका रात 9:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे।

लीजिए अब सुनिए कल के दिन प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। सुबह 6:10 पर भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना, चिंतन का समय रहेगा 6:45। किसानों के लिए कार्यक्रम खेती ना वास्ते 7:10 पर होगा। चर्चा का विषय रहेगा कृषि के साथ अपनाएं पशुपालन। रामचरितमानस का सस्वर पाठ मानस कांड 7:20 पर। कल आप सुनेंगे भाग संख्या 246 का पाठ सुप्रभात। ये कार्यक्रम होगा 7:30 पर। चर्चा होगी अपना कार्य समय पर पूरा करें, नियमित दिनचर्या के फायदे, सम्मान दें सम्मान पाएं। इसके अलावा कुछ मधुर गाने कार्यक्रम सुप्रभात में आप सुनेंगे कल 7:30 पर। सदाबहार नक में ये फरमाइशी कार्यक्रम होगा कल दिन में 10:00। सुगम संगीत में चंद गजलें आपके लिए होगी दिन में 12:30 पर। किसान भाई कार्यक्रम सुनेंगे खेत खलिहान दिन में 12:50 पर। विषय रहेगा चर्चा का जीवाणु खाद व उनकी उपयोग विधि। महिला

अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी दिन में 1:05 पर। चर्चा होगी जिन विषयों पर, वे हैं दखल अंदाजी से बिगड़ते रिश्ते, शादियों के सीजन में भोजन का सही तरीका, एयर प्यूरिफायर कितना सही, और सेहत से भरपूर राजमा। इसके अलावा महिलाएं अपने कार्यक्रम में सदाबहार फिल्मी गाने सुनेंगी। युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम संध्या 5 बजे होगा। चौपाल कार्यक्रम में संध्या 7 बजे प्रधानमंत्री फसल से कृषक सुरक्षा, कपास की उन्नत खेती, कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल सुधार व उसके फायदे। इसके अलावा पुनः प्रसारण होगा एक भेंट वार्ता का, पैरा एथलीट शीशपाल लिंबा से रोहिता शर्मा की बातचीत। सुगम संगीत संध्या 3:15 पर, और नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से 9:30 पर अनुप्रसारित किया जाएगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। समय सरायकी का है।

ठोक माहिती सामेईन दी खिदमत च डी एस संधू दा आदा सामेईन सब कोलों पहलों पेश है साडे अज दे प्रोग्राम दी तफसील। अज दे साडे प्रोग्राम दा आगाज हो से सैं मोहम्मद जुम्मन दी आवाज च हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद दे सूफियाना कलाम नाल। इकनों बाद मोहतरमा प्रीतम चावला पेश करेसन अपनी एक कहानी ते प्रोग्राम दे आखिर च सैं सलीम इकबाल पेश करेसन सैं बेदल सरहदी दी एक गजल। सामेईन इतिहाए साडे अज दे प्रोग्राम दी तफसील। अज दे प्रोग्राम दा आगाज करन दे पहिलां सैं मोहम्मद जुम्मन दी आवाज़ च हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद दे सूफियाना कलाम नाल समात फरमाओ।

0: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरत का है। संध्या के 6:30 में थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू हुआ। सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से जनगणना 2027 के तहत मकानों के सूचीकरण और गणना का काम शुरू हो गया है। आगामी 14 जून तक चलने वाले इस चरण में प्रगणक घर घर जाकर मकानों की निर्माण सामग्री और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में 33 सवाल पूछ रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में इस कार्य के लिए 4,163 प्रगणक तैनात किए गए हैं। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने आमजन से सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की है। उधर पाली जिले में भी 3,000 से अधिक प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए वास्तविक लोकेशन के साथ आंकड़े जुटा रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपित मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न तक पूरी पहुंच थी। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 14 मई को गिरफ्तार की गई मनीषा वाघमारे के माध्यम से नीट परीक्षा के संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और पुणे स्थित उनके आवास पर इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाई। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। कल गिरफ्तार किए गए 2 अन्य आरोपितों को पुणे की अदालत में पेश किया गया और पारगमन रिमांड के बाद दिल्ली भेज दिया गया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने देश भर में 6 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई के इस दौर में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ही देश की संप्रभुता की एकमात्र गारंटी है। श्री शेखावत आज जोधपुर में रक्षा प्रयोगशाला के 68वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में अब केवल पारंपरिक हथियार ही युद्ध का माध्यम नहीं है, बल्कि पेमेंट गेटवे और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसी तकनीकें भी सामरिक हथियार बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि देश रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शेखावत ने वैज्ञानिकों से विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
2: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के दौर में विश्व

0: प्रवेश कर चुका है, ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
1: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब का दौरा कर स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न तकनीकी नवाचारों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के प्रयासों को देखा। मुख्य सचिव ने AI और आधुनिक तकनीक पर आधारित शिक्षा से जुड़े स्टार्टअप्स को PM श्री विद्यालयों से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली स्तर पर ही बच्चों को उन्नत तकनीक और नवाचारों को समझने का मौका मिलेगा।
2: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो आईस्टार्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। आज मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफ़ी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है।
3: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर के मणाई में एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर 51,10,00,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही बजट घोषणा के अनुसार स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये की लागत से विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनाया जाएगा। श्री पटेल ने बताया कि करीब 400 विद्यालयों को CM राइज स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के 1,000 स्कूलों में AI आधारित लर्निंग लैब्स स्थापित की जाएंगी। जयपुर पुलिस पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नवाचार कर रही है। इनमें AI आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप शामिल हैं। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप के बारे में बताते हुए जयपुर के पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने कहा कि ये बहुभाषी ऐप स्मार्ट नेविगेशन और त्वरित सहायता जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
4: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा है, उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। किसी टूरिस्ट को कभी किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प मांग सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले,

0: उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं, इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है, उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर।
1: जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से जूनियर समर कैंप की शुरुआत हुई। पर्यटन कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने इस शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। 20 जून तक आयोजित होने वाले इस कैंप में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए इस वर्ष 500 से 600 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाए हैं। जवाहर कला केंद्र के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. अनुराधा गोगिया ने बताया कि कैंप के दौरान बच्चों को रंगमंच के साथ साथ कला सहित विभिन्न विधाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
2: नृत्य से संबंधित, संगीत संबंधित जो गतिविधियां हैं, जिसमें बांसुरी वादन, गायन और पियानो है, इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं। इसी तरह से कथक नृत्य, राजस्थानी फोक डांसेस, इनका समावेश किया गया है। साहित्यिक में स्टोरी ट्रीज, इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन, कहानी वाचन सीख सके। लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हैं और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए।
1: और अब मौसम। प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। चिलचिलाती धूप और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग के अनुसार अगले सप्ताह प्रदेश के अधिकांश भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी जिलों में दिन का पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राज्य में एक बार फिर से हीट वेव का दौर शुरू होगा। वहीं 18 मई से पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। झुंझुनू में जागरूकता रैली निकाली गई। ANM ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं के द्वारा निकाली गई इस रैली के माध्यम से डेंगू के बचाव और मच्छरों की रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। जैसलमेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की ओर से मच्छर रोधी गतिविधियां की गई और लोगों को समझाया गया। वहीं करौली में जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेमो, पोस्टर, पैम्पलेट और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू। CBI ने आज नीट UG 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में, अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर भीलवाड़ा जिले में शिक्षा के अधिकार को धरातल पर उतारने की मुहिम जारी है। राज्य सरकार की ओर से पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के मामले में भीलवाड़ा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। ये लक्ष्य 1 अप्रैल से शुरू किए गए प्रवेशोत्सव के दौरान हासिल किया गया है। इसके तहत जिले में चिन्हित किए गए करीब 15,500 बच्चों में से 14,790 बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिया जा चुका है। अब भीलवाड़ा जिले में लगभग 5.25% पात्र बच्चे ही स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, जो प्रदेश में सबसे कम है। जिले के तिलोली गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायी पहल देखने को मिली। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 10वीं और 12वीं के 6 मेधावी विद्यार्थियों को शानदार परिणाम देने पर हवाई यात्रा की सौगात मिली। युवा भामाशाह दशरथ सिंह राठौड़ ने इन होनहारों को जयपुर से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा पर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना और अन्य छात्र छात्राओं को मेहनत के लिए प्रोत्साहित करना है। जन स्वास्थ्य

0: स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी हाल ही में भीलवाड़ा प्रवास पर रहे। उन्होंने मांडल विधानसभा क्षेत्र में पेयजल विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जलदाय मंत्री ने कहा कि सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने के मिशन पर काम कर रही है। जिन इलाकों में भी पीने के पानी की समस्या है, वहां टैंकरों के जरिए पानी आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बीसलपुर बांध में पानी की काफी आवक हुई है। ऐसे में अजमेर, ब्यावर, टोंक और जयपुर जिले में पानी की नियमित आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में पानी की दिक्कत नहीं है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बीते दिनों भीलवाड़ा आए। उन्होंने जैन समुदाय के संगठन जीतो की ओर से आयोजित सामूहिक नवकार मंत्र जाप कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज के दौर में धर्म और संस्कृति से जुड़े रहना जरूरी है, जिससे नई पीढ़ी को भी इसका लाभ मिले। जीतो के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिले की चिट्ठी में अब बात ग्राम रथ अभियान की। हालांकि जयपुर में इस महीने होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ईंधन बचत की कवायद के कारण इसका आयोजन अभी रोक दिया गया है। ग्राम 2026 व्यापक प्रचार प्रसार और लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए ही ग्राम रथ अभियान शुरू किया। इसके तहत सभी जिलों के ग्राम पंचायतों पर ग्राम रथ पहुंच रहे थे। भीलवाड़ा जिले में भी जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु के निर्देशन में ग्राम रथ अभियान संचालित किया गया। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने भी जिले का दौरा कर ग्राम रथ का जायजा लिया। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर खरीफ फसल की बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज और खाद के भंडारण के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जिले के प्रवास पर रही। उन्होंने सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम रथ अभियान में शिरकत की। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ग्रामीण रथ अभियान के तहत आसींद क्षेत्र में रात्रि चौपाल में शामिल हुए। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के मौके पर जिले में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए। वहीं पुलिस प्रशासन की सतत निगरानी के चलते इस दौरान जिले में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ। जिले में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। हालांकि मौसम में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले में कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई और कुछ जगह ओले भी गिरे। हालांकि थोड़ी राहत के बाद उमस और तेज गर्मी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि गर्मी में पेय पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए। उन्होंने प्रचंड गर्मी के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं से विशेष सावधानी रखने को कहा है। भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। जनगणना 2027 रा तहत राज्य में आज मकाना रे लिस्ट बनावन रो काम शुरू हुयो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित ने पकड़ियो। हाल ताई 9 जना गिरफ्तार करी चिया। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूला में नुआ कोर्स शुरू करया चावेला। और प्रदेश रा घणखर हलका में जबरदस्त गर्मी। आवता सप्ताह में पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़बारा आसार। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। जनगणना 2027 रा तहत प्रदेश में आज मकाना री लिस्ट बनावन रो काम शुरू फेक्यो। 14 जून तई चलन वाला इन काम में प्रगणक घर घर जार मकान बनावन में काम ली रीजी सामग्री और मौजूद सुबीता रा बारा में 33 सवाल पूछ रहा है। भीलवाड़ा जिला में ई काम सारू 4163 प्रगणक लगाई चिया है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु जनताओं प्रगणका ने सही जानकारी देर प्रशासन री मदद करन री अरज कीनी है। पाली जिला में आई 3072 प्रगणक मोबाइल ऐप रे जरिए वास्तविक लोकेशन सागे जानकारियां भेड़ी कर रहा है।

0: नीट यूजी 2026 परीक्षारा पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित महाराष्ट्र रा पुणेरी बोटनीरी शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंधारे ने गिरफ्तार कीनी। वाने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी विशेषज्ञ रा तौर नियुक्त कीनी ही। जांच एजेंसी रे मुजब वारी जूलॉजी और बोटनी रा पेपर ताई पूरी पहुंच ही। सीबीआई रे मुजब वा 14 मई ने पकड़ी जी आरोपित मनीषा वाघमारे रे मार्फत नीट परीक्षा रा उम्मीदवार ने वारा पुणे रा घर माए खास कोचिंग दीनी। ई मामला माए हाल ताई दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर 9 आरोपिता ने पकड़ी जिया है। काल गिरफ्तार करी जिया 2 आरोपिता ने पुणेरी अदालत सामी पेश करी जिया, जठाऊ वाने अदालत दिल्ली भेज दीना। लाला 24 घंटा माए सीबीआई नैरी नैरी ठोड़ाऊ कई आपत्तिजोग कागजात, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त कीना है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि एआई रा दौर माए देश री हिफाजत रा हल्का माए खुद रे पाण उबो भेवणोई देश री संप्रभुता री गारंटी है। वे आज जोधपुर माए रक्षा प्रयोगशाला रा 68वां स्थापना दिवस रे मौके राखी जिया कार्यक्रम माए बोल रहा है। केंद्रीय मंत्री कहो कि दुनिया रा बदलता हालात माए अब केवल पारंपरिक हथियार ही युद्ध रो जरियो नहीं है, बल्कि पेमेंट गेटवे और सेमीकंडक्टर चिप बनावन सरीखी तकनीक आई लड़ाई रा हथियार बन की है। वह कहो कि देश हिफाजत रा हल्का माए काम आवन वाला साजो सामान दिसावर उ मंगावन री बजाय देश माई बनार खुद रे पाण उबो भेवनोड़ी तेजी बढ़ रियो है।
1: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के विश्व दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है, ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण अंश। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
0: राजस्थान विधानसभा बनिया 75 साल वे वन रे मौके 18 मई ने विधानसभा रा नुआ लोगो रो विमोचन और ऐतिहासिक दरूजा रो नामकरण करियो जावेला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बतायो कि लारला 2.5 साल माए राजस्थान विधानसभा माए डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था, डिजिटल संग्रहालय, संविधान दीर्घा और जन दर्शन सरीखा कई खास नवाचार करी जिया, जाऊ इनरी देश माए खास ओळखाण बनी है। इन खास कार्यक्रम माए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विपक्ष रा नेता टीकाराम जूली और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल समेत कई मान्योड़ा लोग शामिल फैला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर रा भामाशाह टेक्नोहब रो दौरो कर स्टार्टअप्स और नौजवान कारोबारियां कानियों करया जा रहा तकनीकी नवाचार री जानकारी लीनी। वे रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण सरीखा खास हल्का माए स्टार्टअप्स री कोशिशां देखी और वानी सराहना कीनी। मुख्य सचिव एआई और नवी तकनीक माथे आधारित भणाई लिखाई जुड़िया स्टार्टअप्स ने पीएम श्री स्कूलाऊं जोड़बा माथे जोर दीनो।
2: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो आईस्टार्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। आज मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफ़ी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत और नीदरलैंड दुनिया रा संकटन और सामो करण सारू भरोसेमंद, साफ और आवता बगत सारू तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनावन रे बारा माए मिलर काम कर रहा है। वे 5 देशों रा दौरा रा तेत आज नीदरलैंड रा हेग माए भारतीय समुदाय रा लोगों ने संबोधित कर रहा है। श्री मोदी ऊर्जा संकट सरीखी चुनौतियां रो निपटारो बेगो नी भेवन

0: री सूरत में दुनिया रा विकास माथे असर पड़वा सागे मोटी आबादी रे गरीबी री ओर बढ़वा री शंका जताई। प्रधानमंत्री कहो कि 21वीं सदी में भारत मौका री धरती बैन अर सामी आयो है जो तकनीक अर इंसानी मूल्यों रा आधार आगे बढ़ रियो है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रे मुजब व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूलों में नुआ कोर्स शुरू करिया चावेला। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर जिला रा मणाई में एक स्कूल में राखी ज्या कार्यक्रम में आ जानकारी दीनी। वह कहो कि ई

0: आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रे मुजब व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूलों में नुआ कोर्स शुरू करिया चावेला। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर जिला रा मणाई में एक स्कूल में राखी ज्या कार्यक्रम में आ जानकारी दीनी। वह कहो के ई काम में थे 51 करोड़ रुपये उम्बत्ती रकम खर्च करी जावेला। मंत्री बतायो के बजट में करी ज्या ऐलान रे मुजब स्कूलों में बुनियादी ढांचा रा विकास सारू 2000 करोड़ रुपयारो विद्यालय आधारभूत संरचना कोष मनायो चावेला। श्री पटेल बतायो के करीब 400 स्कूलों ने सीएम राइज स्कूलों रा तौर विकसित करी जावेला और 1000 स्कूलों में एआई आधारित लर्निंग लैब्स खोली जावेला। सैलानियारी हिफाजत और सुविधा सारू जयपुर पुलिस एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप सरीखा नवाचार कीना है। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप री जानकारी देता थका जयपुर रा पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल कहो कि न्यारी न्यारी भाषावां माय काम करण वालो ओ ऐप स्मार्ट नेविगेशन और तुरंत मदद सरीखा सुविधाई मुहैया करावेला। वे बतायो कि ई ऐप रे मार्फत सैलानिया ने सुरक्षित गेलां री जानकारी सत्यापित गाइडां री लिस्ट और मुश्किल भगत माय मदद मिल सकेला।
2: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा है, उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा, किसी टूरिस्ट को कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प मांग सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं, इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर।
1: जयपुर राज जवाहर कला केंद्र में आज जूनियर समर कैंप शुरू हुआ। पर्यटन कला और संस्कृति विभाग के शासन सचिव शुचि त्यागी इनरो उद्घाटन किनो। 20 जून तक चलने वाला इन कैंप में मोटी तादाद में बच्चा नाम मंडाया है। जवाहर कला केंद्र री अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा गोगिया बतायो कि शिविर में बच्चा ने रंगमंच सागे कला समेत न्यारी न्यारी विधावारी व्यावहारिक सिखावण दी जा रही है।
3: नृत्य से संबंधित, संगीत संबंधित जो गतिविधियां हैं जिसमें बांसुरी वादन, गायन और पियानो है, इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं। इसी तरह से कथक नृत्य, राजस्थानी फोक डांसेस, इनका समावेश किया गया है। साहित्यिक हुई स्टोरी की इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन, कहानी वाचन सीख सकें। लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हैं और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए।
1: अरब मौसम प्रदेश का घनखर हल्का माए जोरदार गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुजब लाडला 24 घंटा माए फलौदी 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सागे सब 19 ठोड़ रहे हो। महकमा रे मुजब आवता सप्ताह प्रदेश का घनखर हल्का माए पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़बारा आसार है। इन दौरान उगनी रातुनी हल्का माए तापमान 45 डिग्री सेल्सियस ताई पुगण की संभावना है। इन बीच 18 मई आतुनी और उत्तराध हल्का माए जोरदार बायरो बाजण की संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस रे मौके प्रदेश में आई कई कार्यक्रम रखी जा। झुंझुनू माए ANM ट्रेनिंग सेंटर री टावरिया री ओरों जागरूकता रैली निकाल और डेंगू बचाव और मच्छरों की रोकथाम रे बारे माए जानकारी दी री जी। जैसलमेर माए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रा कर्मचारियों री ओरों मच्छर मारण सारू जतन करी जिया और जनता ने जानकारी दी री जी। करौली माए जाँच करें, सफाई करें और ढकें मुद्दा माथे चलाया जा रहा अभियान रा तहत शहरी और गांवी हलका माए डेमो पोस्टर पंपलेट और सोशल मीडिया रे जरिए जाग जगाई जा रही है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। जनगणना 2027 रा तहत राज्य में आज मकान री लिस्ट

0: अपनावन रो काम शुरू थियो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित ने पकड़ियो। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूलों में नुआ कोर्स शुरू कर्या जावेला। आर प्रदेश घणखर हलका में जबरदस्त गर्मी, आवता सप्ताह पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़वारा आसार। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर,
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरत गढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर। संध्या के 7 बजे हैं, आइए चौपाल में चले।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनिए सगळे परिवाराने भुरूबाई की घणी घणी राम राम मोकली मोकली राम राम। ले आज तो आ रे नवीन भाई जी रोहतास भाई जी
1: भाई जी
0: राम राम सा
2: राम
0: राम
2: राम सा राम राम।
1: और भाई साहब
2: बस ठीक है थे बताओ
1: क्या आप स्वस्थ है?
2: स्वास्थ्य बढ़िया है सा।
1: लारे सुनियो कि लूला लागी थारे?
2: लू तो अब देखो चल ही थी है।
0: बेजा गर्मी है भाई जी पर
2: बेजा गर्मी है
1: भाई जी। इन लू को मियाँ बचाओ सरु आपा सुना के भाई कोई सब हो रखो कोई आ रखो कोई बा रखो थे बताओ बचाओ के हो सावड़
2: बचाओ। देखो मियाँ तो थे हमारा डेरा हो थे ज्यादा बढ़िया बता पाता पर थे को तो मैं बता दूँ। नींबू को पानी पियो
1: ठीक है
2: छा पियो राबड़ी पियो कच्चो प्याज है वो खाओ। अरे लू में झट तक उसके ना निकलो गमछो सिर के ऊपर बांध के रखो अरे पानी पीता रहो।
0: गमछो तो भाई जी एसी को सो काम करे
2: अच्छा।
0: अब जी तावड़े में निकला नहीं तो जी पून लगे बढ़िया ठंडी ठंडी लगे सिर के माँ सूती हो
2: तो गमछा थोड़ा गिल्लो कर लियो
0: गिल्लो तो बहुत जे भाई जी पसीने।
1: अच्छा जब बाई दबे लाग ही जे मान लियो कहेंगे आऊता है जाऊता है गैर कई बार क्या बार हूँ आयो अरे अगर कोई पानी वानी पी लियो ठंडो अरे बिंग लू लाग ही जे मान लियो तो बीर वो बचाव के है मतलब लू लग गया पछे
2: तो देखो सारू पहला तो नहीं ORS पीनो है। ORS आवे जी को WHO आरो
1: जी
2: बोलियो एक लीटर पानी में घोल लियो
1: ठीक है
2: पूरो पैकेट और बिना 6 घंटा 7 घंटा के अंदर गुटको करके पीना है
1: ठीक है।
0: बाकी डॉक्टर ने दिखा लिया
2: नहीं अगर मतलब शुरुआती लक्षण
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
2: तो भाई दिखा सको भी होते हैं
1: हाँ,
2: ज्यादा थान लागे गड़बड़ हो रही है
1: लेकिन आपने ORS को घोल लेना चाहिए और सागे पानी रे लिक्विड इन तरह नहीं चाहिए।
2: लिक्विड में तो ORS आई क्यों
1: हाँ,
2: सागे थे नींबू भी ले सको भी सके थारा शरीर में जो पानी की कमी हो गई
1: हाँ हाँ
2: बा ठीक
1: बिंगी पूर्ति हो जाए
0: कुल मिला के रोहतास भाई जी जी पानी जिया जिया घटे ना जिया बिया बराबर आपकी पूर्ति करे रखो पानी की नहीं तो शरीर में पानी की कमी छूके है कि कई बिरिया यानी गंभीरता में अगर आप सोचा तो बहुत से लोगों की जान गेड़ी है। पानी कम होना ही नहीं चाहिए शरीर
1: बिल्कुल बात आ भी है कि अबार के एक मान लियो जेठ रो मीनो चाले जेठ पछे अषाढ़ अषाढ़ राय मीना बिरखारा मीना है
0: बाजी वाह
1: तो अमे जिको पानी मान लियो बिरखारो हुएगो तो बिना बचाने का भी तरीका तो अपन अपनाना चाहिए क्यों पानी की कमी हो रही है लगातार।
2: पानी तो देखो सूख ही रहे अभी
1: हाँ
0: किसानी की भाई जी सारा मोटी जी की आगे समस्या खड़ी हो सी नहीं बा आई है कि भाई जल स्तर जी को है वो घटन ला रही है आबादी दिनों दिन बदल ला रही है तो पानी की खपत जी की है बा तो है बिसिक बिसी एर जी की आबादी बढ़े भाई दिनों दिन बढ़न ला रही है खपत एर आमद है कम जन आमद कम रह सी जन कठे न कठे किल्लत तो आ सी
1: सही है
0: तो बी प्रति सावचेत नहीं मांगा तो भाई बात है कि भाई फिर बाद में अपन रास्ता अब अपना लिया तो ठीक है नहीं तो खड़े पग
1: बात बिल्कुल
2: तो रास्ता अपनाना क्या बताओ कोई
0: एक रास्ता तो पहला थे मन बाबा थे बातड़ी कर गए अब
2: अबे बहुत प्रगतिशील
0: किसान एक तो सुना दे मन भजन
2: हां
0: यार फिर मन बाबा बातड़ी क्यों कर गए थे
2: कान्हा राम जी भुआड़ है एक प्रगतिशील किसान है
0: अच्छा।
2: क्या जैविक खेती करे

0: वाह साहब, भजन तो देखो बड़ा फूटरो सो सुनियो आप मालू जी बागड़वा गाड़ो क्यों बोल भाई।
1: जोर गो भाई जी यार, भजन वापस सदाई के शुरुआत कराइया।
0: हाँ चोखो लागे जी,
1: जरूरी हुआ
0: संध्या को टेम है,
1: भगवान को नाम ले लेना।
0: अजय एक ए भगवान आईडा बैठे हैं, शिव बात कौन कर सी?
1: हम बात भाई जी कराओ,
0: कौन है बताओ देखा, बात तो
1: करा। आपने गाना राम जी मुआल है,
0: अच्छा कौन है, एक है
1: प्रगतिशील किसान है।
0: अच्छा
1: यार भाई जी एक रे जैविक खेती जी की जरूरी है नी
0: हाँ।
1: आज के समय ने देखता,
0: हाँ।
1: क्योंकि अब स्वास्थ्य क्रांति चलन लग रही है। तो एक ये सागे तो बतावे के जैविक खेती करे, यार जी को करण को इच्छुक है किसान भाई, बिना सीखा हुआ भी है।
0: तो नवीन जी क्षण आदमी
1: थे, क्षण आदमी हमारे बिचारा की
2: थोड़ा गिना
0: है नी।
1: हाँ
0: ठीक है सर।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों खेतीबाड़ी की आप बात कराया करा हाँ, तो अपा अक्सर सुना कि जैविक खेती है जिकी करनी चाहिए, पर किसान जिको है वो कई बार सोच तो रह जाए कि मैं क्या शुरू करूँ और क्या हो पासी, आपने जिको उत्पादन है वो कम ना हो जाए, ये सारी चीज़ें जिका सवाल है बेंगे मन में रहे किसान के। इसी बातें जानने वास्ते आज अपना आकाशवाणी सूरतगढ़ का स्टूडियो में आप बुलाए है प्रगतिशील किसान कान्हा राम भुआल ने। ये गाँव खोतावाड़ी का है, तहसील पीड़ीबंगा और हनुमानगढ़ से। अने भारत सरकार के ऑर्गेनिक कृषि को मंत्रालय वेबिंग की तरफ से चैंपियन फार्मर को अवार्ड भी मिले है आदि नहीं। और सारू बड़ी बात है कि एक खुद खेती के माया जैविक अपनाए हुए पर सागी सब बढ़िया काम जिको कर रहे हैं, बाकी किसानों ने सिखाना को कर रहे हैं। आपका आसपास का किसान, दूर दराज का किसान भी यहाँ से प्रशिक्षण ले हुए संस्थाएं बना रखी है, बिंगे माध्यम से ये लगभग 2500 किसानों ने अभी तक प्रशिक्षण दे चुके हैं। सारों पहले तो कन्हा राम जी थारो स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: धन्यवाद जी, राम राम जका सुनन आरा किसान बंधु है बने।
2: कन्हा राम जी सारों पहले तो आप बताओ थे ऑर्गेनिक खेती जी है जैविक खेती है बे मैं कद आया?
3: अभी ट्रेनिंग तो मैं 2016-17 में लिंदी और भी बाद में 2018 में थोड़ा बहुत प्रयोग करियो।
2: अच्छा।
3: और अभी 2023 यूं लगातार करना रहे।
2: अच्छा 2023 से थे खुद के खेत में
3: जी
2: जैविक खेती कर रहे हो
3: जी,
2: तो थारे मन में की आई कि मैं जैविक करूँ?
3: मन में तो चारा पास देखना आ रहा माहौल के है।
2: अच्छा के माहौल बताओ।
3: वो माहौल हो है कि चारा पास एक तरीके छुप गए वार होने लग रहा है स्वास्थ्य के ऊपर
2: या
3: केस का लुक गए, और यहाँ धीरे धीरे जका है आप यहाँ लगना रहा है कि जो उम्र को जो गैप कम हो है।
2: अच्छा।
3: इन कठिन कठी खेती को भी एक रोल है जका, अभी यह रासायनिक जहरीली जी खेती अभी भी एक प्रभाव है सीधो सीधो।
2: जवान जी का जल्दी बुढ़ा होने ला रहे हैं कि?
3: बिल्कुल जवानी आनी को ना रही, बुढ़ा सीधा बुढ़ा पपरी जाए
2: तो कान्हा राम जी थे।

0: खेती जी की है, मैं जैविक कर ली तो बिना वास्ते थे, कोई प्रशिक्षण लियो के थे आप ही शुरू करी
1: नहीं, प्रशिक्षण लेके आयो मैं पहली
0: कदों?
1: बार 2016 के अंदर बीकानेर से हूँ, प्रशिक्षण ले गया रानी बाजार से हूँ।
0: अच्छा, बड़ा कोई संस्था थे प्रशिक्षण
1: हाँ,
0: लियो?
1: संस्था कोई एक गौ सेवा गतिविधि संस्था
0: अच्छा,
1: बांगे द्वारा मैं प्रशिक्षण ले गया आयो बठे से हूँ। और बिंगा बाद में 2017 में जयपुर 4 दिनांग एक ट्रेनिंग ही भी मैं जा गया आयो।
0: थे आपने क्षेत्र में जिया कृषि विज्ञान केंद्र है, आमे भी जाकर प्रशिक्षण लियोगे?
1: हाँ, आ मैं KVK संग्रिया से जुड़े हूँ।
0: अच्छा, केवी के संग्रियों जुड़ रहा
1: जी
0: हूँ। तो जैविक खेती के बारे में माने थे, जिका सुनो नारा किसान भाई है
1: हाँ,
0: बाना, बताओ कि जैविक खेती किया करीजिए?
1: बिल्कुल। अब भी जैविक खेती सरल सरल विधि जकी है,
0: हाँ,
1: किसान ने प्रकृति प्रदत्त भी कह सका, बा खेती जैविक खेती है। और बिंगे माँ सारों पहला अपन जकी जरूरत है, बा जकी पहला करता बुढ़िया अकूरड़ी वाली खाद,
0: अच्छा,
1: बिंगी सारों पहली जरूरत है जैविक खेती में।
0: आकूड अरे खाद किया बने तू?
1: अकूरड़ी वाली खाद तो पशु बनावे और अपने इकट्ठा करे और घराला, पर बिने भी जिया अपने कह रहे नहीं, कंपोस्ट करके सड़ा
0: हाँ,
1: के गला के तैयार करो।
0: कोई विशेष तरीको है सड़ाना को की?
1: हाँ बिल्कुल, इन्हें अपने सरल कंपोस्ट खाद कह सका।
0: हाँ,
1: एक ट्रॉली जिया है भी, ट्रॉली ने आप अगर तैयार करनी है तो बा भरगे घरों खेत में ले जाके इसी छाया जगह रख दियो,
0: हाँ
1: और बीहू बाद में जो अपनो मेज आई लदाइया ऊंची चोर से करके
0: ठीक है।
1: कुर्सी जीती की ऊंची, और फुट फुट पर बिंगा माँ लकड़ियों मोरा काट लो, और बिंगा माँ ताजा गोबर लेके गाय को 30 किलो और 30 लीटर छा कोई भी पशु की, और 2 किलो गुड़ और एक ड्रम वो पूरा घोल बना के ए
0: अच्छा
1: जका अपा कुरडी का माँ मोरा काट दिया, बिंगा माँ वो घोल घाल दियो,
0: ठीक है,
1: और अकूरडी अगर सूखी है तो थोड़ी भी ना गिल्ली कर लियो, लड्डू बंदे इसी के,
0: ठीक है,
1: और ऊपर बन सटी हूँ या पराली हूँ या कोई आकड़ों बुई का जो को भी अपना आस पास खरपतवार को कचरो पड़ी है
0: हाँ,
1: बीच ना ढक के छोड़ दियो। तो जिया केचुआ खाद को प्रोसीजर है, 60 दिनों 70 दिनों तैयार हुआ है, 48 दिनों 60 70 दिन के बीच में आप भी एक कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगी।
0: तो बीच
1: केचुआ
0: बीच
1: खाद से
0: में,
1: भी कई गुणा दुणा बढ़िया
0: नहीं बीच बीच में मैं कोई पानी
1: ना,
0: डाल लूँ
1: कुछ
0: कुछ
1: भी
0: कर लूँ,
1: कौन करनो इन्हें ढक के छोड़नी है
0: की को नहीं करना, बस छोड़
1: बीच में
0: दो।
1: की कौन करनो। वो पहले दिन जो को अपनों घंटे भर को परिश्रम है, मेहनत
0: हाँ,
1: है, भाई है, बीच में कोई भी अड़बाद को नहीं।
0: आज की एक ट्राली तैयार होगी, आ कितनी बीघा में काम आ जाएगी?
1: आप 1 बीघा ले गए 3 बीघा ताई रेड़ सका, अगर
0: अच्छा,
1: आपने कहना पर्याप्त है जन तो बीघा में रेड़नी चाहिए,
0: हाँ
1: अगर यहाँ लगा कि इति है तो फिर भी ना 3 बीघा ताई बिगेर सका, क्यों ट्राली के अंदर 40 1 क्विंटल वजन रेवा है।
0: सही बात है। तो कनाराम जी, जी आप देखे करा किसान भाई है, बे सारू पहला कणक में ही जैविक करने की सोचा है,
1: जी
0: तो कणक की अगर आप बात करा तो थे शुरू से लेकर अंत तक बताओ, कटे कटे किसे किसे चरण पे के काम करना पड़ेगा?
1: बिल्कुल, अभी के जैविक करां जी सारा किसान आई बात करें, और
0: हाँ
1: पहले साल ही बंगो उत्पादन जो को है 14 15 क्विंटल अपने एरिया का माँ जो को भाखड़ा पर हुआ है, बी एरिया का माँ उत्पादन जो को है 14 क्विंटल लेके 16 क्विंटल तक को है, और
0: हाँ
1: अगर वे जैविक करे सीधी तो वो उत्पादन 8 क्विंटल पर 6 क्विंटल पर भी आ जाए,
0: आदो जैसी
1: क्योंकि
0: दो।
1: बिंगी गलती आ है कि वहाँ किसान जगह भैया हैं बिंगो जो की शुरुआत करी जैविक की तो वहाँ के करो एक बार बार रुखी सूखी कूड़ी वाली खाद रेड़ दी, बीच में भी ना पूरा टाइम की को दिन दियो,
0: अच्छा,
1: और फसल का माँ तो यूरिया ही देन ला रहा है, DAP देन ला रहा है, बा फसल का पहला बिजाई में भी दिन दी पर इनमें को दिन दियो, तो इनमें एक तो कूड़ी वाली खाद दे दियो, बीहू बाद में बिजाई हूँ पहला जब अपन रूणी भावा बी टाइम में सरसों की खड़ी दे इसके 5 किलो, अगर आप 20 किलो DAP देने लग रहे हैं 20 किलो यूरिया देने लग रहे हैं, 5 किलो सरसों की खड़ और 2 किलो हरा कशीस, क्यों अपने बेल्ट में आयरन की बहुत कमी है
0: अच्छा,
1: तो जो को हरा कशीस है इनकी पूर्ति
0: तो पहला
1: करेगा
0: माटी जांच करा ले ज्यादा बढ़िया कोनी?
1: ना। माटी की जांच मेरो वो मानना है कि अपने एरिया में जांच होने लाग रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सारे गाँव में है, तो एक आम घर की महिला जकी गए आजकल बे जकी आंगनबाड़ी वाले बेना जांच है नहीं,
0: हाँ,
1: तो बे जांच कराओ जन सारी अंग ही आयरन की कमी बतावे,
0: अच्छा,
1: इंगो मतलब है कि जकी धरती माता की कोख है और जकी भी जननी की कोख है और एक गाय की कोख है, तीनों समान कोख है, अगर लेडीज का कोई समस्या है या महिला में कोख में कोई कमी बताई गई है तो बा धरती में भी जरूर बा कमी
0: नहीं,
1: है।
0: आप बात तो थारी सच्ची है कि आप जिकी चीज खावांगा
1: हाँ
0: भाई अपने शरीर में बनेगी।
1: बिल्कुल, तो अभी आप देखा कि आपने जो कि सामान्य घर की महिला भी आयरन की थप्पो थप्पो गोली खावे जी, तो इनको मतलब आयरन आपने लगभग कमी रेवे,
0: नहीं, वो तो क्या है, हरी पत्तेदार सब्जी को नहीं खाओ तो भी यही कम हो जाए।
1: बिंगो कारण भी है पर विशेष करके तो फसल का माह है
0: अच्छा, तो बिंग बाद में आप बात करा जी थे, कह दियो कि भाई बा खाद
1: बांझ
0: रेड़
1: आ
0: दी।
1: खात रेड़ दी,
0: हाँ
1: अब बिजाई कर दियो,
0: अच्छा,
1: और जब कोर को पानी लगावे
0: हाँ
1: बिंग ऐसा गए ताजा गोबर गाय को
0: ठीक, हाँ
1: 30 40 किलो पर बीघे को पानी के सागर चलाओ,
0: ठीक है,
1: अगर आप 5 पानी लगावा तो 5 पानियां को सिस्टम बना

0: भी पहलो कोर को पानी लगायो तो 40 किलो ताजा गोबर,
1: हाँ
0: दूसरो पानी लगायो तो 40 लीटर गौमूत्र, तीसरो पानी लगायो तो फिर ताजा गोबर, चौथो पानी लगायो तो फिर गौमूत्र। तो एक दाणो जो को है वो
1: ठीक है,
0: आपणो कणक को कम गोवे।
1: थारो कहने का मतलब है अगर ए जी की थे सारी चीजें बताई है
0: जी
1: आना, अगर किसान मान ले और आपका खेत में कर ले तो जो उत्पादन है वो कम कौन नहीं
0: कम
1: उस।
0: कौन हुआ, क्योंकि जबकि एक तो बापा खाद बताइए कूड़ी वाली तैयार करेड़ी
1: हाँ
0: बाहर रेड़ दी, तो यहाँ मान लो कि सारा DAP यूरिया थैला खोल दिया खेत पे।
1: एक थे बता रहे जिसका माइक्रो न्यूट्रिएंट है, अगर बांगी भी मान लो कमी हो जाए तो थे फिर वे वास्ते किसी खाद बनाओ।
0: बी खातर भाई सब 6 एलिमेंट्स के नाम से आपा भूमि शक्ति के नाम से एक चीज तैयार कर सका,
1: हाँ
0: जो को 100 लीटर पानी के अंदर गोबर, छः
1: हाँ
0: किलो गाय को ताजा,
1: अच्छा
0: 6 लीटर गौमूत्र और 1.5-2 किलो गुड़,
1: ठीक है,
0: इन नए पानी में घोल लियो 100 लीटर में।
1: 100 लीटर पानी लेना है
0: हाँ 100 लीटर पानी में।
1: ठीक है
0: और बीहू बाद में तीसरा दिन दिन गए इंगमा 3-1 किलो सरसों की खड़ गाल दी,
1: ठीक है।
0: और 5वें दिन दिन गए इंगमा जो कि 4 प्रकार की दाल को आटो, कोई सी भी
1: अच्छा
0: 4 प्रकार की दाल ले लियो,
1: ये
0: चना
1: सारी
0: उड़द
1: चीजें
0: मूंग
1: एक
0: उड़द,
1: दिन में कौन मिलानी
0: एक
1: है।
0: दिन में कोनी, 5वें दिन
1: अच्छा
0: दाल मिलानी है इंगमा,
1: ठीक है
0: और मिला गए। और बीहू बाद में 10 दिन तक और इन्हें रख लियो, सुबह शाम घुमाणो क्लॉक वाइज और ढक के रखना कपड़ों बोरियों और परछाइयां रखें,
1: ठीक है
0: तो आज की तैयार होगी आ एक बहुत शक्तिशाली 6 एलिमेंट्स तैयार हो जाएगा बड़ो
1: हाँ।
0: शानदार तरीका।
1: ओ फिर खेत में किया दे जैसी
0: ओ पानी के सागा भी तिरा सका आपा, बिघे को 3 लीटर
1: हाँ
0: और आपा फसल के ऊपर 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव भी कर सका।
1: अच्छा, कीट पतंगा और हरी बीमारी अगर मान लो खेत में आ जाए आप
0: हाँ
1: ये सारे तो दे दिया है तो चलो खाद है
0: बिल्कुल।
1: और फिर स्प्रे वगैरह करना उसी तो के कर
0: हाँ
1: सी।
0: स्प्रे खातर जी अगर मच्छर तेलो आवे
1: अच्छा
0: रस चूस कीट जगह कमा पा
1: हाँ
0: बे अगर आवे तो 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो नीम, आधो किलो धतूर और आधो किलो आकड़ो,
1: ठीक
0: इन
1: है
0: एक ड्रम में भिगो के रखे, किन्नमन क्रिया कर लिया सड़ा लिया, सुबह शाम डंडो घुमावे ढक के रखे, 20 दिन में आ गर्मी पड़े इनमें तैयार हो जाए।
1: ठीक है
0: अगर आपन जल्दी है तो इन उबाल के भी तैयार कर सका, 8-10
1: अच्छा
0: उबाला
1: ठीक
0: दे के
1: है
0: भी तैयार कर सका, और फिर इंगो जो लिक्विड बने हुए इन्हें छानगे और 20 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप फसल पर छिड़काव करांगा तो रस चूस कीटों अपनों बचाव हो जाएगा।
1: और दूसरी को लट वगैरह सुंडी वगैरह ए
0: हाँ
1: आवास्ते हैं
0: इन खातिर भी तैयार कर सका इंग हमारा 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो नीम, आधो किलो धतूरो, आधो किलो आक, 50 ग्राम हरी मिर्च, 50 ग्राम लहसुन और 300 ग्राम तुम्बो, आ चीज़ा ने भी किन्वन क्रिया कर लिया सड़ा लिया इन गौमूत्र के सागे और वो यूज कर लिया,
1: अच्छा ठीक है
0: और इनने भी 20 दिन बाद में सड़ने के बाद में 15 ml प्रति लीटर के हिसाब से लट सुंडी कीड़ो अपन दिखो बी टाइम में वो यूज करे, बहुत बढ़िया
1: तो
0: परिणाम है।
1: कानाराम जी लट सुंडी और ए जी का कीट है ये तो अपन दिख जाए,
0: हाँ
1: और कई बार फंगस हुए कोई बैक्टीरिया लाग जाए तो पत्ती में पतो कौन लागे
0: हाँ
1: भी मैं के करे फिर किसान।
0: देखो फंगस 3 तरियां की है,
1: अच्छा
0: लाल धोली और काली जखी बोले,
1: ठीक है
0: और बा पत्ते पर आवेगी तो पत्ते को कलर बता देगो, पत्तो सड़न लाग जाएगो, और जड़ में लागेगी तो पौधो सूखने लाग जाएगो,
1: ठीक है
0: जड़ ना पा पट के देखा तो कठी काला निशान उसी कठी पिल पिली होगी, मतलब
1: ठीक है
0: तो बी खातर आपने घरे ही वो बहुत बढ़िया उपचार है जिको प्राकृतिक और थारा जकी बोला नेचुरल खेती इनमें भी बताई जाए, छाछ जकी है खट्टी लस्सी
1: अच्छा
0: इनको बड़ो शानदार उपयोग आप इनमें कर सका, इन्हें भी अगर सीधी 10-5 दिन पुरानी कछा है बा भी छिड़क सका आप 25-30 ml प्रति लीटर के हिसाब हूँ, और इन्हें अगर पावरफुल शक्तिशाली बनानी है तो 10 लीटर छा के अंदर 1.5 किलो गुड़ और थोड़ो कोई तांबे को टुकड़ो और 1 चम्मच हल्दी, इन आप 5 दिन एयर टाइट करके रख दियो छाया
1: ठीक है
0: भर के, और 5 दिन बाद में इन्हें निकाल के 20 ml प्रति लीटर के हिसाब से इनको छिड़काव करांगा तो किसी प्रकार की फंगस है बिंगो इलाज बहुत शानदार तरीकों आप कर लेंगे।
1: लगभग जी की आपने हरी बीमारी अभी सारी बता दी,
0: जी
1: और एक मान लो दिमक भी आ जाएगा रे कई बार
0: हाँ
1: बिंगो भी कोई इलाज है क्या
0: बिल्कुल, दीमक
1: बताओ।
0: गो इलाज है बहुत सरल तरीकों है,
1: हाँ
0: दीमक गो इलाज है जी, अगर आप खेत में कच्चो कचरो दियोगा जी
1: अच्छा
0: हाँ पर्याप्त मात्रा में देना शुरू कर दियोगे तो दीमक पौधा ने कदे नुकसान कौन करे, क्योंकि वह मित्र कीट बतावे,
1: थे वो कह
0: पर
1: रहे कि
0: अगर
1: जिको
0: वो
1: कचरो
0: आ भी
1: को मिट्टी
0: गयो
1: में मिला दो।
0: बिल्कुल, अब जी सरसों को गुणो है
1: हाँ
0: आजकल बेचन लग गया तो दीमक ने बेचारा ने कच्चो सामान चाहिए सूखो चाहिए वो तो आप खेत में छोड़ो को नहीं, तो बत तो बेचारी सीधी फसल पर ही अटैक करेगी, आपको जीवन बचाना है बने ओ मिल गयो तो वह पौधा ने नुकसान कौन कर सी, आधो ध्यान बिंगो बिना उड़ जी, पर अगर बाई चांस आ भी गई तो फिर बिंगो इलाज है कि 100 लीटर पानी के माँ अगर 50 ग्राम हींग बढ़िया वाली ले गए
1: अच्छा हींग
0: हाँ, और ई पानी ने आप तैयार कर लियो
1: हाँ
0: और ई पानी को अगर आप छिड़काव करांगा ड्रेंचिंग करांगा मतलब थोड़ी नमी है जमीन के अंदर और वो पानी

0: और भी जमीन के ऊपर अगर अपन ड्रेंचिंग कर दी,
1: ड्रेंचिंग मतलब
0: मतलब है जमीन गिल्ली है, पोत
1: हाँ
0: दांगा सारा सारे इन ढोलकी में गाल के
1: अच्छा
0: वो
1: ढोलकी
0: पानी
1: में डाल
0: छिड़कनो
1: दी स्प्रे कर दियो।
0: जी, जड़ का
1: हाँ
0: सारा स्प्रे
1: हाँ
0: करनी, तो बिंगो दीमक को 10-12 दिन खाता, दीमक बिंग स्मेल का कारण, सुगंध का कारण है, वहाँ
1: नीचे
0: बैठो हट जाएगी
1: नीचे चल जाएगी।
0: बिल्कुल सा
1: तो थारा कहना मतलब वो है कि अगर पहला उन जगह कचरो रखांगा तो बिंग बढ़ेगी तो कौन दिमाग
0: ना,
1: है
0: बिल्कुल कौन बताएगा।
1: काल नहीं हो कि मैंने बहुत खाना मिल गया तो बाकी
0: नहीं
1: सब्जी
0: नहीं
1: बढ़ती
0: नहीं
1: जाए।
0: नहीं वे फिर इंगा और भी प्राकृतिक इलाज है,
1: अच्छा
0: अगर बा और ज़्यादा बदन लाग रही है लगा अपनों यूं कंट्रोल कौन हुई, तो
1: हाँ
0: फिर बिना प्राकृतिक तरीका है जहाँ दीमक ने सबसे ज़्यादा सफेदा की लकड़ी पसंद है, तो
1: अच्छा
0: आप 20-20, 50-50 फुट पर सफेदा की लकड़ी रेड दें डोली पर, और तो बाद दीमक बिना
1: ये
0: चाल
1: तो
0: जाएगी
1: देसी इलाज अपना किसान
0: हाँ
1: करे भी करे।
0: बिना करे करे बात चक के रेड दी। दूसरो आपा मक्की खाने के बाद में जो को शेष बच जाए बूटा को, लकड़ी बच जाए जिकी बूटे की मक्की खाने के बाद है, वो हांडी कोई रुई हांडी अभी मैं गाल दियो, और बिंग तड़क में थोड़ो सो ऊपर मोरा काट दिया बिना झुकतियों,
1: ठीक
0: और
1: है
0: बिंग माँ रख दी तो दिमक बिंग माँ जगी पा हांडी चक के बारह धोगे यार पाछी ले आगे रख दियो और फिर बूटो गाल दियो, फिर वा वापिस भी माँ जगी, तो दिमक को वो इलाज भी अपना बढ़िया तरीकों कर
1: ठीक है
0: सका।
1: सही बात है। तो कान्हाराम जी थे बहुत ही बढ़िया बात बताई हमारा किसान भाई जी का भी सुनने लग रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आशा करा कि किसान भाई इन्हें जैविक अपनावेगा और आपका खेत में आपका पड़ोसियां गए आपका
0: देखो
1: भाईयां गए आपका गांव में
0: जी
1: सब जगह लोगों ने प्रेरित कराएगा कि
0: जी
1: जैविक खेती करें। धन्यवाद थे हमारे स्टूडियो में आया और इतनी बढ़िया बात मैंने बताई।
0: जी धन्यवाद।
2: वाह सकनाराम जी, बड़ी संतरी जानकारी दी आज आपने।
0: देखो आज के टाइम की जरूरत है जैविक खेती।
1: देख लो आपने प्रधानमंत्री जी भी कहे
0: हाँ
1: हैं।
0: बिल्कुल साहब।
2: एक समय और था भाई जी का अपन ठाई है कि भी आपनों भारत देश जद आजाद हुए ना जद आपने कने निर्यात करने वास्ते कहीं को नहीं हो आ तो आ आपने खाने वास्ते कणक को नहीं जद तो लिए आपा हरित क्रांति और अब जरूरी है स्वास्थ्य क्रांति
0: स्वास्थ्य
2: क्योंकि
0: क्रांति जरूरी है, और ई मैं आके जैविक खेती जी की है ना
1: हाँ
0: आपने खातर बहुत जरूरी है अब ई
1: तो
0: बगत
1: जैविक
0: में।
1: खेती से ही स्वास्थ्य क्रांति ऐसी अब गुरु भाई जी बहुत आगे की बात कहे तो
0: हाँ
1: हाँ
0: सच्ची बात है भाई जी, इतनी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है,
1: हाँ हाँ
0: कोई फूटो सो गीत दो।
1: सुना दे सुना दे।

0: वाह देखो बुरु भाई की तो अच्छो गीत
1: है।
0: आपने सुना
1: गीत तो देखो
0: दियो।
1: बहुत ही चौको सोलह श्रृंगार की बात करे है तो
0: हाँ सोलह श्रृंगार की बात है। एक चीज हो रहा है भाई जी के अपना जी का राजस्थानी का लोक गीत लोक भजन है ना
1: हाँ
0: आंसू की है कि यहाँ समझो का आत्मा की जी की एक तृप्ति हुए है ना वही तो लोक को आनंद है।
1: ठंडक सी है भाई।
0: हाँ ठंडक सी है। खेती बाड़ी के कार्यक्रम के अंदर जब इन तरह की बातें चल है ना तो बहुत शांति लगे। क्यों गुरु भाई थे बताओ।
2: बिल्कुल राजस्थान की जब बात आवे ना तो
0: हाँ
2: राजस्थान पूरे भारत देश में ही आप वो एक अलग अस्तित्व रखा है। आप
0: हाँ
2: अजाना भी हाँ
0: बिल्कुल
2: इतिहास के अंदर जब नाम आवे तो राजस्थान अब नाम ज्यादा
0: हाँ
2: पुराणों जी को राजस्थान है बिंगी बात ज्यादा आवे बिंग मा फिर राजस्थानी भाषा
0: हाँ बिल्कुल
2: जब ए गीत सुना तनिया घुघरिया से बंदे को
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और खेती बाड़ी में थे के कुछ को
2: खेती
0: उगास।
2: बाड़ी भाई जी अब बात करानी स्वास्थ्य क्रांति की। किसानी जिंदा जद रहेगी जद पानी बचावांगा
0: हाँ
1: बात तो
0: बिल्कुल
1: एकदम सच्ची है।
0: बिल्कुल। बरसात को टाइम है तो भी खतर जल बचाण को आप सारा अपने किसान भैया ने कहो।
1: जड़ बचाना की बात आप शुरू में भी करी
0: हाँ
1: तो जड़ बचाना वास्ता अपन लोग करनो के चाहिए। देखो अब मौसम हमारे
0: बिरखा रो
1: मयासी अपने
0: हाँ
1: खासी है
0: बिल्कुल
1: तो बी दौरान क्या है कि छाता जी की अपनी जितनी भी है
0: हाँ
1: चाहे शहर में है चाहे गांव में है
0: हाँ
1: भी धोके साफ रखो
0: हाँ बिल्कुल
2: छात बुआर लियो
1: छात बुआर
2: हाँ
1: लियो एकदम
2: चौकी माटी जी
1: चौकी।
2: के भेड़ी करके नीचे ले आओ। एर लगभग क्या है कि शहरी क्षेत्र में तो भाई जी मैं आ सुनेड़ी है कि जिया कोई मकान बनावे ना
1: हाँ
2: तो बिना पहला तो इजाजत लेनी पड़े
1: कटूं लेनी पड़े
2: जी की सरकारी संस्था है ना
1: के नाम
2: जिया छोटो शहर है तो नगर पालिका है
1: अच्छा
2: एर जिला स्तर पर परिषद है एर संभाग स्तर पर निगम है तो बठून जद मकान बनावा ना जना इजाजत लेनी पड़े तो भी इजाजत के माँ बांगो बेपी सा भरवावे के भी टंकी जी की छत को जी को मे को पानी है ना बिन बरगेर
1: अंग्रेजी में के कहने हैं
2: इन अंग्रेजी में वाटर हार्वेस्टिंग
1: रेन वाटर हार्वेस्टिंग
0: हाँ रेन
1: हाँ
0: को मतलब मैं हुए नहीं भाजी।
1: मे
2: तो बिंगो पीसो भरवावे बे जे कनी नहीं बनाए ना तो बे पीसा जब तो जेर सरकार बना के दे एर नहीं तो खुद बना ले
1: अच्छा
2: एर आपका फोटोवार कागज उपलब्ध करा देना तो बे पीसा पुट्ठा में दिए।
0: अच्छा नवीन जी आ
1: हाँ
0: तो आए बता दियो भाई नुआ मकान बने जी की
1: हाँ
0: थे बात ने शुरू करिए भाई जी का पुराना मकान है।

0: जिकांग इंतरंग सिस्टम को निम के
1: ए बीच में आपा नुआ मकान ने पा गया जिकांग पुराना मकान है नहीं तो बंग जिको छात को एक जिको नालो आ रहे
0: ठीक है
1: तो वो के बारह तक आवे
0: ठीक है
1: ठीक है थे बेना एक आजकल जिक टंकिया चाले ने प्लास्टिक आ
0: हां ठीक है
1: एमे स्टोर कर लियो
0: हां आ बस सात बोरेडी होएगी तो सा पानी आवेगो
1: अब वो पानी बे अंदर जद रहो को नहीं के बेना पियो
0: हां
1: ए नहर में पानी आवे नहीं इमे तो केमिकल वगैरह
0: के नहर में हां हां
1: तो ए नो तो बुकी तो साफ
0: यार ओ पानी भाई जी कई दिन तक खराब भी कोनी
1: साल भर कोनी
0: भाई हां साल भर खराब कोनी आ बात बिल्कुल सही है
2: बस कोनी पानी
0: ए है बंसे कोनी वो पानी वो पानी है ना टंकी भी टंकी में वो सारो स्टोर हो जाएगा और यूं समझ लियो कि एक आद में डंग गो हो तो बाद 2000 लीटर वाली जी टंकी है नहीं थारी तिरिया मिरिया हो जाएगी
2: अच्छा
0: के
1: तिरिया मिरिया और गांव में अगर थारे कोई छोटो तड़ा है
0: हां
1: तो ओई टाइम है
0: हां बिल्कुल
1: बिंगी कर दो सफाई माटी काट दो
0: हां सही बात है
1: चेक कचरो है
0: हां बिल्कुल
1: कोई बिंगी अगर पाल पुल टूटड़ी है
0: हां बिन बांध दे बिल्कुल
1: हां और बे में पानी भरने दो
0: कुंड वगैरह है नी तो वो पानी जिको है बात अपनी आप बहुत बेसकीमती है और पानी जिको है बहुत बेसकीमती है किसान भाई इन मन है यार भी पानी भेड़ो करे
2: बतावा नाइट्रोजन ऊपर हुआ नहीं तो पौधे की बटवार वास्ते
1: पढ़े लिखे यार इस बात करे नाइट्रोजन तो देखो कोनी होगा
0: सही बात है
2: क्या क्या बुंटू बटवार ही मिले हुए गए
1: बटवार तो यहाँ अलग नहीं साफ पानी है
0: साफ पानी बिल्कुल
2: जड़ जड़ मजबूत हो जाए क्या सावण में बुंटा ही वास्ते क्या लगा हुआ है
0: दरखत लगा सकते हैं आ बात भी इन बिरखाओं संबंधित है सब दरखत लगाना
1: दरखत लगा दो
0: क्यों बिरखा टाइम जो दरखत लगावांगा तो बेदरखत क्या चोखा पन पाएगा
1: चोखा पन जाएगा
0: और आगे फिर बाऊ तो मैं आवेगो
1: मैं भी बासा आसी और ठंडक भी रहेगी
0: हाँ हाँ ये बात है तो एक ठंडो करना
1: गीत सुना दो

0: सुनो गीत। एर नवीन भाई जी, अब अपन लेनो इंगो लारो
1: अच्छा
0: के भाई मैं बासी
1: हाँ,
0: एर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना है,
1: वृक्ष लगाना है,
0: ज्यादा से ज्यादा पानी
1: पानी
0: बचाना
1: को
0: है।
1: संचय करना है।
0: तो आज

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर बोल रहे हैं। आइए कुछ भक्ति रचनाएं सुनें।

श्रोताओं, भक्ति रचनाएं इस वक्त आपके लिए आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर पर प्रसारित की जा रही है। आइए ये रचना सुनें।

वसंतदेव का गीत आपने अभी एस जानकी की आवाज में सुना। आइए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 8 बजे हैं। लीजिए कार्यक्रम सुनिए एक ही फिल्म से।

श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे 26 अक्टूबर 1968 को रिलीज हुई फिल्म मेरे हुजूर के गाने। मेरे हुजूर विनोद कुमार की लिखी, उन्हीं की निर्देशित फिल्म, जिसमें राजकुमार, माला सिन्हा और जितेंद्र ने मुख्य भूमिका निभाई।

दोस्तों, फिल्म के सभी गाने हसरत जयपुरी ने लिखे, धुन शंकर जयकिशन ने बनाई। ये गीत सुनिए मन्ना डे की आवाज़ में।

अभी आपने मन्ना डे को सुना, राग दरबारी पे गाए। इस गीत को 1968 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए सम्मानित किया गया। आइए मोहम्मद रफी की आवाज में राग बागेश्री पे गाया ये गाना सुनें।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में हसरत जयपुरी का लिखा ये गाना सुना, धुन शंकर जयकिशन ने बनाई। लीजिए आज के इस प्रोग्राम के आखिर में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में राग भैरव पर ये गाना सुनें।

0: शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के फाइनल में जगह बनाई। सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 3 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम और भारतीय हॉकी में डच हॉकी कोचों की सराहना की। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। और संजना ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज बैंकॉक में सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया की जोड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एक रिपोर्ट।
2: भारत की टॉप पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के गोफ सेफेई और नूरुजीदीन को 1 घंटे और 22 मिनट तक चले मुकाबले में 19-21, 22-20, 21-16 से हराकर 2026 सीजन के अपने पहले फाइनल का टिकट कटाया। मलेशिया जोड़ी ने दमदार आगाज किया और उतार चढ़ाव भरे पहले गेम को 21-19 से जीत लिया। वहीं दूसरा गेम और भी ज्यादा नाटकीय रहा, जहां दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन सात्विक और चिराग ने पहले गेम के मुकाबले ज्यादा आत्मविश्वास और संयम दिखाया। 20-20 से बराबर पर आने के बाद सात्विक ने एकदम सही जगह पर शॉट मारकर जरूरी पॉइंट बनाया और दूसरा गेम 22-20 से जीत लिया। इसी लय को बरकरार रखते हुए जोड़ी ने आखिरी गेम में अपना दबदबा बनाए रखा और गेम को 21-16 से जीतने के साथ ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: संजीव, 2024 में इस जोड़ी ने थाईलैंड ओपन में मैच डबल्स खिताब जीता था, उसके बाद चाइना ओपन में एक फाइनल का सफर है, उसके बाद ये फाइनल नसीब हुआ है, एक कदम की दूरी है अब खिताब से।
1: जी बिल्कुल, और जहाँ तक मुझे याद है कि उन्होंने यहाँ पिछले टूर्नामेंट में खिताब जीता था, यहाँ अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं और जिस तरह से खेल रहे हैं, खासतौर पे अगर आप सेमीफाइनल की बात करें, हालांकि हर एक राउंड में उन्होंने अच्छा खेल दिखाया है, बट सेमीफाइनल में अगर आप देखें तो डाउन थे, पहला गेम हार चुके थे और उसके बाद वहां से वापसी करते हुए उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया। और जिस तरह से, जैसे तीसरे दूसरे और तीसरे गेम की बात करें, खासतौर पे दूसरे, पहला गेम तो
0: बराबरी का रहा काफी,
1: 21-19 से हार गए, लेकिन दूसरे में 22-20 से जीते और तीसरा का स्कोर 21-16 रहा। तो मैं ये स्कोर बता के ये मतलब बताना चाह रहा हूँ कि फिटनेस को लेके इनका हमेशा इशू रहा है। हाल के 1-2 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो फिटनेस की समस्या से जूझते रहे हैं दोनों, नहीं पार्टनर में अगर एक भी कोई कभी समस्या हुई तो वो दोनों जोड़ी पर, हाँ, उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जिस तरह से वो एक गेम डाउन होने के बाद वापसी करते हैं, दूसरे गेम में भी फाइट करते हुए 22-20 से जीतते हैं, तो ये बताता है कि फिटनेस का लेवल क्या है अभी और किस तरह से उन्होंने फिटनेस हासिल कर ली है। खेल में तो कभी वर्ल्ड नंबर 1 जोड़ी रह चुकी है, खेल में तो कभी इनके सवाल ही नहीं था कि उनका खेल डाउन है या आउट ऑफ फॉर्म है, फिटनेस का इशू हमेशा रहा था। बट ये जो स्कोर लाइन है, मैं इस बता के इसलिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जबरदस्त फिटनेस है। अब उनके सामने फाइनल में लियो कर्नांडो और डैनियल मार्टिन की जोड़ी है, ये इंडोनेशिया के प्लेयर हैं, दोनों थॉमस कप डबल्स में जीत चुके हैं और ओवरऑल कई खिताब जीत चुके हैं और इनके पास भी काफ़ी अनुभव है और देखना है कि किस तरह का इस मैच में इनका खेल रहता है। दोनों की उम्र थोड़ी कम है इनसे, एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं, बट ओवरऑल जिस लय में दिख रहे हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, हम खिताब जीतने की उम्मीद कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि ये जोड़ी इस साल की और इस सीजन के अपने पहले फाइनल को एक अच्छे खिताब में कन्वर्ट करती हुई नजर आए। रियाद में सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अनिमेश कुजूर और मोहम्मद अफसल ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट में अपनी अपनी स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। भारत ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक भी अपने नाम किए।
3: सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में भारतीय धावकों की रफ्तार का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अनिमेश ने पुरुषों

0: के 200 मीटर रेस 20.77 सेकंड में पूरा करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.44 सेकंड के साथ रजत पदक अपने नाम किया। उनके साथ ही भारतीय स्प्रिंटर गुरविंदर वीर सिंह ने 100 मीटर का कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 800 मीटर रेस में 1:48.24 सेकंड के समय के साथ भारत के मोहम्मद अफसल ने देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता, जबकि प्रतियोगिता में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक पुरुषों की 4x100 मीटर रिले टीम ने जीता। भारत के लिए एक और कांस्य पदक 110 मीटर बाधा दौड़ में एम कृषिक ने 13.90 सेकंड के समय के साथ अपने नाम किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: संजीव, सभी खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है रियाद में, लेकिन एक नाम भारतीय एथलेटिक्स में थोड़ा धीरे से लेकिन अपनी रफ्तार से बहुत तेजी से सामने आ रहा है, अनिमेश कुजूर। छत्तीसगढ़ से आते हैं, 100-200 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। कितनी संभावनाएं इस खिलाड़ी में नजर आती हैं, जो कि स्प्रिंटर, अब तक भारत में बीते कुछ समय से एक ब्रेक लगा हुआ था, ये खिलाड़ी आया है।
2: देखिए, ये नेशनल रिकॉर्ड इनके नाम है और रेगुलर ये क्लॉक कर रहे हैं, 10.2 है, 10.4 है, तो इस तरह से लगातार वो, हालांकि जो रिकॉर्ड है 10.18 है। अब हमें इंतज़ार है कि कब एक कोई भारतीय 10 सेकंड से कम में 100 मीटर दौड़े। 200 में भी इनकी टाइमिंग अच्छी है और एशियन गेम्स में हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं, हालांकि एशिया में चाइना के, जापान के, इवन कुछ और देशों के ऐसे एथलीट हैं जो 10 से कम दौड़ने वाले हैं, बट यहाँ पर वो दिन वो होता है कि वो दिन किसका अच्छा रहता है, तो मुझे ये लगता है कि कम से कम एशियन लेवल पे एक अच्छे एथलीट के तौर पे ये उभर रहे हैं। उम्र भी ज़्यादा नहीं है, मेहनत भी करते हैं और लगातार ये उस टाइम को मेंटेन किए हुए हैं। अब उनके जहन में भी ये बात होगी कि किस दिन हमारा 10 सेकंड से कम टाइम निकले। फिलहाल उम्मीदें जो आप कह रहे हैं कि उनसे क्या हम उम्मीद करें, तो उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा है और अगले एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में हम देखेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स का थोड़ा टफ होता है 100 मीटर 200 मीटर, बट एशियन गेम्स में मुझे लग रहा है कि वहाँ हमारी निगाहें रहेंगी कि वो पोडियम पे आए।
1: जी बिल्कुल, उनको पोडियम में देश देखना चाहेगा, जो कि उनके 9 सेकंड उतने ही होंगे जो नीरज चोपड़ा के 90 मीटर का एक बेंचमार्क था, और पदक में बदलते हुए ये खिलाड़ी आपको आने वाले समय में नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की अपनी यात्रा के दौरान आज नीदरलैंड्स में क्रिकेट की चर्चा की और नीदरलैंड्स क्रिकेट में भारतीय समुदाय के योगदान का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी की और नीदरलैंड्स ने T20 विश्व कप में भाग लिया और अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया।
3: अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नीदरलैंड्स की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन भारत की टीम को भी नीदरलैंड की टीम ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। जब हम तेजा निदामनुरु और विक्रमजीत सिंह को नीदरलैंड की जर्सी में देखते हैं, या फिर जब आर्यन दत्त जैसे युवा खिलाड़ी डच क्रिकेट के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को ट्रेनिंग देने वाले डच कोचों का भी उल्लेख किया।
3: भारत की हॉकी को और अधिक निखारने में डच कोचिज की भी मेहनत रही है। हमारी विमेन हॉकी टीम बीते कुछ समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, इसमें कोच मरीन का अहम रोल है।
1: हॉकी की बात तो अक्सर करते हैं, लेकिन क्रिकेट में एक इमर्जिंग टीम है नीदरलैंड्स। नो डाउट वर्ल्ड कप में जिस तरह का वो भारत और नीदरलैंड्स का मुकाबला था, भारत ने 17 रन से जीत दर्ज की थी, लेकिन अच्छा खेल और अच्छी खेल भावना नजर आई।
2: हाँ बिल्कुल, और ये जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया, जाहिर तौर पर ये जो हम देखते हैं कि नीदरलैंड्स हॉकी में ज़बरदस्त उनका रिकॉर्ड रहा है, पिछले कुछ 2-3 दशकों से 4 दशकों से तो नीदरलैंड्स की टीम ने हॉकी में बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, और खिलाड़ी ही नहीं बल्कि वहाँ से अच्छे अच्छे कोचेज निकले हैं, और उन्होंने सही कहा कि उनकी देखरेख में भारतीय टीम, उन्होंने नाम भी लिया विमेंस टीम के कोच का। और क्रिकेट की तो जो बात है, नीदरलैंड्स ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी टीम नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत कम है, वहाँ बहुत कम लोग हैं, बाहर से जो जाके लोग वहाँ बसे हैं इधर भारतीय उपमहाद्वीप के, वही खेलते हैं, वहाँ के भी लोकल अब खेलने लगे हैं, और फाइट

0: देती है वो टीम
1: जी
0: तो इसकी चर्चा उन्होंने की और जाहिर तौर पर उनको इससे एक प्रेरणा मिलेगी वहाँ के क्रिकेट प्लेयर्स को।
1: जी बिल्कुल, और क्रिकेट की बात हुई है तो बात अब आईपीएल की भी कर लेते हैं, जहाँ कोलकाता में इस समय गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 14वें ओवर में 2 विकेट पर 167 रन बना लिए थे। इससे पहले लखनऊ में कल मिचेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराकर चेन्नई की प्लेऑफ में पहुंचने की राह को थोड़ा और मुश्किल बना दिया। एक रिपोर्ट।
2: प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार 3 जीत का क्रम तोड़ दिया। लखनऊ में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 5 विकेट गंवाकर 187 रन बनाए। टीम के लिए कार्तिक शर्मा ने 42 गेंद पर सर्वाधिक 71 रन की पारी खेली थी। एलएसजी के लिए आकाश महाराज ने 3 विकेट लिए। 188 रन के लक्ष्य को मिशेल मार्श की 38 गेंद पर 90 रन की तूफानी पारी ने एलएसजी ने बेहद आसान बना दिया और टीम ने 20 गेंद शेष रहते 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। जोश इंग्लिश ने 32 गेंद पर 36 और निकोलस पूरन ने 17 गेंद पर नाबाद 32 रन बनाकर मार्श का बखूबी साथ दिया। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद सीएसके अंक तालिका में 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ 6ठे स्थान पर है, जबकि एलएसजी अंतिम और 10वें स्थान पर है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब लखनऊ इस टूर्नामेंट से एक अच्छा फेयरवेल लेके विदा होना चाहता है अगले सीजन के लिए, लेकिन इस फेयरवेल ने चेन्नई की राह थोड़ी मुश्किल कर दी।
0: हाँ बिल्कुल, चेन्नई के पास अब जो अब बाकी के 2 मैच बचे हैं तो ये टीम जीतती है तो 16 अंकों तक पहुंचेगी। फिर भी देखना है कि बाकी टीमें और जो ऊपर हैं, आरसीबी है, गुजरात टाइटंस है, सनराइजर्स है, पंजाब किंग्स है, इनका प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर ये सारे अपने अपने मैचेस जीतने में सफल रहे तो फिर चेन्नई के लिए मुश्किल है। और फिलहाल जो आज का मैच अभी का चल रहा है वो भी काफ़ी रोमांचक हो चला है, गुजरात और केकेआर के बीच।
1: जी बिल्कुल, केकेआर के लिए कहना गलत नहीं होगा, डू और डाई है कि आज अगर आप जीत नहीं दर्ज करते हैं तो इस प्रतियोगिता में आपके लिए आगे का सफर लगभग समाप्त हो जाएगा।
0: बिल्कुल, और अगर आज गुजरात की टीम जीत हासिल करती है तो मुहर लग जाएगी एक तरह से, वो 18 अंक पहुंच जाएंगे और उनके अभी 2 मैचेस बाकी हैं तो आप मान सकते हैं कि ये टीम पहुंच जाएगी प्लेऑफ में, जबकि केकेआर का सफर खत्म हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, तो गुजरात की नजर होगी कि टेबल टॉप करे और कम से कम फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे रहते हुए अपनी टैली को समाप्त करे।
0: हाँ बिल्कुल, देखिए केकेआर के लिए तो यही है कि अगर वगर में भी उनको रहना पड़ेगा, अगर वो बाकी बच्चे में अपने मैच जीतते भी हैं तो ये गारंटी नहीं है कि वो आगे चले ही जाएंगे, बट हाँ ये है कि ये जीतने के बाद उनकी उम्मीदें बनी रहेंगी। अभी जो मैच की स्थिति है, 15वां ओवर चल रहा है, 175 रन बन गए हैं 2 विकेट पर, रघुवंशी अंकृष रघुवंशी क्रीज पर है और अगर ये रहते हैं तो अगले 5-6 ओवर में ये 225 तक टीम पहुंच सकती है। और ऐसे में देखना होगा कि गुजरात की तरफ जिनके पास एक से एक बढ़ के बैट्समैन हैं किस तरह वो टारगेट हासिल करते हैं। बट ओवरऑल जो अब ये ईडन गार्डन पर मुझे लग रहा है कि 1 महीने के बाद ये मैच हो रहा है, लास्ट जो यहाँ मैच हुआ था तकरीबन उसके 1 महीने बाद यहाँ पर मैच चल रहा है और एक वहाँ जो दर्शक पहुंचे होंगे उनको एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा।
1: जी बिल्कुल, एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा, जबकि गुजरात की टीम को भी किसी भी स्कोर पर आप कम नहीं आ सकते हैं तो उम्मीद होगी कि आने वाले समय में एक अच्छा मैच यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा। और क्रिकेट के बाद बात कर लेते हैं भारोत्तोलन की। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने आज महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठा करके 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। संजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड

0: मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस

अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता

प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल सुनी, आइए अब सुने गुलाम अली की आवाज़ में नासिर काज़मी की ये गज़ल कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी।

लीजिए, प्रोग्राम के आखिर में सुनिए जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल, शायरी भोपाली की, कि मुझे गुस्सा दिखाया जा रहा है और तबस्सुम को चबाया जा रहा है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर। रात के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती सुनेंगे।

0: पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।

0: कैसी है पहेली।
1: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
2: सारंगा तेरी याद में।
1: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलू नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिल एक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
0: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।
1: तुम ही मेरी पूजा।
0: फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म

0: फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
1: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
0: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्ज।

फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाइच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था।

0: फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाई का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कहीं।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: तू न रोना के तू

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती हैं।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो।
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे, मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है। सन 2018 में आई बधाई हो, इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक,

नब्बे के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है। वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं।

0: जो माँ को समर्पित हैं, फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD 2।
2: जब जब मुझ पे उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा, रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दरअ आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नयन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नयन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता, मैंने मेरे हाथ में किधर है
1: जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूँ, चला रहा हूँ, चला रहा हूँ, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।
2: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब से थोड़ी देर बाद होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरत का है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से समाचार पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में सुनेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग

0: सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhumi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he's attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century